Ik ben Min. FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 18 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की

0: ग्यारहवीं से तेरहवीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन, विषय है अनुशासन। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ है पालन और शासन का अर्थ है नियम। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमें नियमों का पालन करना सिखाता है, जीवन को सही तरीके से जीना सिखाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है जहां अनुशासन की आवश्यकता होती है। नियमों का पालन करना

0: करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति अनुशासन में रहकर नियमों की पालना करता हुआ कार्य करता है तो वो अपनी मंजिल को सफलता से प्राप्त कर सकता है। अनुशासन सही रास्ता बताता है, चीजों को आसान करता है और हमारे जीवन में सफलता लाता है। अनुशासन आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीजें सीखने, अनुभव करने आदि के अवसर प्रदान करता है। यदि जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो भ्रम और विकार पैदा होते हैं, व्यक्ति लक्ष्य से भटकता है, जीवन में प्रगति न होकर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में सफल होने के लिए माता पिता तथा शिक्षकों के आदेशों का पालन करना ही चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए एवं सही तरीके से सब कुछ सीखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासन में रहते हुए जीवन जीना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह का गाया हुआ भजन। लीजिए अब सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ भजन। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे अनूप चलूटा का गाया हुआ भजन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम रचना, समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: इस देशभक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का। आज का प्रसंग संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय के भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पुरवे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हें सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:40 हो चुके हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर लोक भजन आज हम आपको सुनाएंगे कामजी भाई व साथियों की आवाज में। 7:20 पर आप सुनिए वातायन में आपको सुनाएंगी वार्ता वागड़ में आदिवासी समुदाय की स्वस्थ परंपराएं। वार्ताकार हैं कमलकांत कटारा।

8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। कार्यक्रम की थीम रहेगी आसमान। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद 11:30 पर।

राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर, सुगम संगीत का आनंद 9:10 पर ठीक 11 बजे भी आप सुन सकते हैं।

एक नजर शाम की सभा की तरफ। शाम की सभा में 5:05 पर हमारी बहनें सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक। 6:15 पर प्रायोजक कार्यक्रम हमारी बेड़िया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजक कार्यक्रम किसानवाणी 7 आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद रात्रि 10:00। विविध भारतीय कार्यक्रम 5:30 पर 9:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 7 जिले की चिट्ठी 6:30 पर जयपुर अजमेर केंद्र से। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 6:45 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे, हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर जिले केंद्र से 9 बजे, विविध भारती के कार्यक्रम 7:30 पर 9 बजे, दिन के 10 बजे भी के बाद

हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे आप सुन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न किया।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हम बरवावाड़ा सब भाई ने वलजी भाई ने राम राम। देखो किसान भाइयों, खेती नी बात कार्यक्रम ने माध्यम थकी आज आपणे वात करी रहा हूं कि बकरी पालन आय नो एक अच्छो स्त्रोत कहवाय है। किसान भाइयों, बकरी पालन आय नो एक महत्वपूर्ण ने बहुमुखी स्त्रोत है, केम के आने थकी दूध, मांस, खाल ने खाद जेवा उत्पाद भी मले हैं, जेने बाजार में बिक्री करीने किसान अपनी आय भी वधावी शके हैं। दूधनो उपयोग पनीर ने मक्खन जेवा उत्पाद बनाबा में भी काम आवे है। बकरियोना बच्चा भी बिक्री करीने नगदी प्राप्त करी लेवाए। आने अलावा बकरियोनी खाल थकी चमड़ा उत्पाद भी बनावी शको ने इने लीड थकी उत्कृष्ट खाद भी बने है, जे काफी महत्वपूर्ण कहवा है। किसान भाइयों, बकरी पालन थकी अन्य पशुपालन नी तुलना में कम लागत लागे है ने आ छोटा किसान भी आसानी थकी काम करी शके। आ किसानों हरू साल भर आयना एक स्थिर स्त्रोत प्रदान करे हैं, जेने थकी इननी आजीविका भी सुरक्षित था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बकरी पालन महत्वपूर्ण योगदान आले है। किसान भाइयों, आ प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप थकी रोजगार ना अवसर भी प्रदान करे है। बकरियों की विभिन्न प्रजातियां आवे हैं, जे आपड़े क्षेत्र अनुसार काम आवे ई आप आसानी थकी राखी शको।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से आप सुन रहे हैं कामजी भाई और साथियों की आवाज में गए लोक भजन। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: कामजी भाई व साथियों की आवाज में गए लोक भजन यही संपन्न किए गए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:20 हो चुके। लीजिए सुनिए वातायन। वातायन में आपको सुना रहे हैं वार्ता, वागण में आदिवासी समुदाय की स्वस्थ परंपराएं। वार्ताकार हैं कमल कांत कटारा।
1: समुदाय की परंपराओं और संस्कृति पर विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जो आज के समय में हमारे समुदाय की जो परंपराएं जो स्वस्थ हैं, समाज में जो प्रासंगिक हैं, एकता के सूत्र में पिरोने वाली जो परंपराएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं, उनकी चर्चा करना चाहूंगा। संस्कृति के बारे में हमारे भारतीय विद्वान हुए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने संस्कृति के बारे में कहा है कि जो कुछ भी हमें समाज में किसी जाति में या किसी धर्म किसी समुदाय के बारे में जो दिखता है वो सब कुछ संस्कृति नहीं है। संस्कृति का उनके अनुसार जो उनका मत है, संस्कृति का तात्पर्य है जो कुछ सर्वोच्च है, जो हमारा चिंतन मनन है, और वो चिंतन मनन समाज में एक मूर्त रूप में एक व्यवहार रूप में जो कुछ भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन जो सर्वोच्च है हमारे चिंतन का वो संस्कृति है। तो सबसे पहले हमें संस्कृति के बारे में ये अवश्य पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में संस्कृति क्या है और विकृति क्या है, तब जाकर के हम समाज हित में हमारी जो परंपराएं हैं जो रीति रिवाज हैं उनको हमारे समाज हित में और देश हित में अपनाते हुए समाज को और हम आगे ले जा सकेंगे। संस्कृति आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है वो शेष भारतीय संस्कृति से कोई बिल्कुल भिन्न नहीं है। जैसा कि भारतीय संस्कृति के बारे में सभी के बारे में ये कहा गया है यहाँ के कि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वाणी, ये जो अनोखापन है ये जो वैशिष्ट है वो हमारी जो विविधता में एकता की बात है उसका कोई विरोधाभास पैदा करने वाली बात नहीं है ये, और हमें हमारी संस्कृति को रंग बिरंगा बनाता है और आकर्षक बनाता है और समृद्ध बनाता है। चाहे वो भाईचारा हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो कर्मफल का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे जो शाश्वत मूल्य भारतीय संस्कृति के हैं, जो मानव हित में समाज हित में है विश्व हित में है, ये सभी के सभी जो मूल तत्व हैं वो आदिवासी संस्कृति में भी आदिवासी परंपराओं में भी झलकते हैं। इस संदर्भ में कुछ परंपराएं कि हम मूर्त परंपराएं जो हैं आदिवासी समुदाय की, जैसे आदिवासी समुदाय में महिलाओं के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हमारे समुदाय में। हमारे समुदाय में आज अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर जो स्थानीय समाज है आदिवासी समुदाय है उसमें लिंगानुपात देखा जाए तो पूरे राजस्थान में सबसे बेहतर लिंगानुपात है।
0: मैं एनी,

विशिष्ट है, आत्मिकता हो, चाहे वो कर्मफल का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे जो शाश्वत मूल्य भारतीय संस्कृति के हैं, जो मानव हित में, समाज हित में है, विश्व हित में है, ये सभी के सभी जो मूल तत्व हैं, वो आदिवासी संस्कृति में भी, आदिवासी परंपराओं में भी झलकते हैं। इस संदर्भ में कुछ परंपराएं कि हम मूर्त परंपराएं जो हैं आदिवासी समुदाय की, जैसे आदिवासी समुदाय में महिलाओं के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। हमारे समुदाय में, हमारे समुदाय में आज अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर जो स्थानीय समाज है, आदिवासी समुदाय है, उसमें लिंगानुपात देखा जाए तो पूरे राजस्थान में सबसे बेहतर लिंगानुपात है। किसी भी तरह का कहीं कोई भी बंधन नहीं है, जैसे विधवा विवाह हो जाता है। अन्य हमारी जो भारतीय संस्कृति में आज दहेज बहुत बड़ी विकृति के रूप में उभर करके आ रहा है, उसको रोकने के लिए कितने ही कानून बनाए जा चुके हैं, कठोर कानून बनाए जा चुके हैं, इसके बावजूद भी ये जो कुरीति है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आदिवासी समुदाय में ये परंपरा अब थोड़ी सी देखा देखी, मतलब दहेज की परंपरा है वो प्रवेश कर गई है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जो स्वस्थ परंपरा आदिवासी समुदाय की थी, ये थी दहेज के बजाय यहाँ दापा प्रथा थी। और दापा का मतलब ये होता है कि वर पक्ष है वो वधू पक्ष को वधू के मूल्य के रूप में, मतलब खरीदने की बात नहीं है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि आदिवासी समुदाय में स्त्री का कितना महत्व है कि स्त्री धन के रूप में गहने वगैरह तो वधू को चढ़ाए ही जाते थे। इसके अलावा कुछ नगद सहायता भी लड़की के पिता को वर पक्ष की तरफ से दी जाती थी, ताकि लड़की के पिता को लड़की का विवाह धूमधाम से कराने में किसी तरह की कोई समस्या न आए। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी समुदाय में लड़की का जन्म लेना कोई बोझ नहीं, और यही मूल वजह है, इस स्वस्थ परंपरा की वजह से ही हमारे यहाँ लिंगानुपात जो है लड़कियों का आदिवासी समुदाय में बहुत ही। एक और जो है हमारी परंपरा जिसमें भाईचारा जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम सुदैव कुटुंबकम की जो भावना है वो सिद्धांत रूप में है हर काम में, कि आप खेती बाड़ी भी करेंगे तो भी मिल करके करेंगे, आप मकान भी बनाएंगे तो भी मिल करके बनाएंगे, आप कोई भी बड़ा काम करेंगे जिसमें समय लगने वाला कोई भी काम हो, जिसमें ज्यादा लोगों की जरूरत ऐसा कोई भी काम हो, तो उसके लिए किसी को मजदूरी के रूप में बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। और बचत का कदम कदम पर कहीं कहीं ध्यान रखा जाता था कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे फिजूल खर्ची हो जाए और समाज पर अनावश्यक किसी तरह का आर्थिक बोझ हो, जो एक स्वाभाविक समाजवाद जिसको कह सकते हैं आप, आदर्श समाजवाद जिसको कह सकते हैं, वो आपको आदिवासी समुदाय में आदर्श रूप में आपको मिल जाता है। और उसी का एक मूर्त रूप अभी भी जीवित है जिसको हम कहते हैं नोतरा। आदिवासी समुदाय में नोतरा प्रथा आज भी जीवंत है, जिसमें ये है कि शादी के समय चाहे लड़की हो या लड़का हो, विशेष करके पहले लड़के, क्योंकि लड़के की शादी में ज्यादा खर्चा हुआ करता था, जैसे मैंने जैसे कहा कि दापा भी चुकाना होता है और इसे दौरा को, ये सारी चीजों को लेकर के लड़के के ब्याह में कुछ ज्यादा धन खर्च हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी के लिए इतना साधन संपन्न नहीं हो तो उसके लिए ये सब संभव नहीं होता था। तो ऐसे समय में रिश्तेदार हैं, गांव के भाई बंधु हैं, यहाँ के सभी लोग मिल करके, चाहे वो 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 25 रुपया हो, उस तरह की परंपरा थी, और वो सब मिल करके उसको नकद जो है, जिस दिन शादी के पहले दिन नोतरे के रूप में एक कार्यक्रम होता था सामाजिक, और सभी लोग मिल करके और धूमधाम से बिनोला वगैरह निकालते थे, साथ साथ में आर्थिक सहायता भी करते थे, जिसको हम नोतरा कहते थे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी भी जारी रहनी चाहिए स्वस्थ परंपरा के रूप में, लेकिन आज ये जो है वो एक तरह का नोतरा है वो व्यवसाय में बदल गया है। अभी जैसे शादियां चल रही हैं तो दिन में आपके 10-10 शादियां भी हो रही हैं, 15-15 शादियां भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति एक जगह 500 से कम नोतरा रखने की परंपरा रही नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया कि आप 1000 रखेंगे, 2000 रखेंगे, 5000 रखेंगे। दिन में अगर आप 10 नोतरे आ गए और 500-500 भी आ गया, 1000-1000 भी आ गए, तो समझ लो आपको 10,000 रुपया या 15,000 रुपया, 20,000 रुपया। लेकिन समाज के स्तर पर तो सब अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया है कि जो गरीब है वो कर्जा लेकर के भी नोतरा रखने लगा है, गिराने भी लगा है। तो वो जो नोतरा जो पहले एक दूसरे को कर्जे से बचाने के लिए और सहयोग करके उसको किसी भी तरह की आर्थिक संकट से बचाने के लिए था, आज वो आर्थिक संकट का कारण बनता जा रहा है, कर्जे का कारण बनता जा रहा है, और इस तरह से जो परंपरा है वो थोड़ी सी विकृत हो गई है। तो उस विकृति को आदिवासी समुदाय को सोचना पड़ेगा, अब उसको वापस जो मूल जो सहायता का भाव था उसी के रूप में नोतरा रखें। एक जो बहुत बढ़िया परंपरा हमारी है जिसको केवल दूसरा जो

0: समाज समाजशास्त्री है उसको केवल आदिवासियों को ये समझते हैं कि ये केवल संगीत में नृत्य में मशगूल रहने वाली कौम है और मनोरंजन में बहुत ही ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नृत्य है या तो तलवार के साथ में, लाठी के साथ में, तीर कमान के साथ में, गोपन के साथ में ही लगभग नृत्य पहले हुआ करता था, अब भी लगभग होता है। उसी नृत्य के साथ साथ में उन हथियारों के संचालन की कला भी प्रदर्शित की जाती है। एक उसमें अगर आप देखेंगे नृत्य के साथ साथ में एक किलकारी होती, जिसको पहले हम रणभेरी या समझिए कि आप युद्ध की चुनौती के रूप, आज से अगर 15-20 साल पहले वो जो किलकारी होती तो उसका मतलब ये लिया जाता था कि यार ये युद्ध के लिए आवाज है, वो युद्ध घोष हुआ करता था, वो संदेश हुआ करता था। अगर गांव में शादी ब्याह नहीं है या कुछ भी नहीं और आपने सामान्य परिस्थितियों में ये आवाज अगर सुन ली तो पूरा गांव ये समझता था कि कहीं ना कहीं कोई संकट है और ये युद्ध की कोई स्थिति है, तो पूरा गांव हथियार लेकर के दौड़ पड़ता था। तो ये वो नृत्य परंपराओं में मतलब हमारा एक जो शौर्य है, जो उत्साह है, जो वीरता है, उसका भी कहीं ना कहीं हमारे नृत्य और उसमें एक एकता जिसको कह सकते हैं कि एकता के साथ में किसी संकट का कैसे सामना करना, किस तरीके से एक दूसरे के संकट में मतलब कुछ भी करने के लिए तत्पर रहना, बलिदान देने के लिए तत्पर रहना, वो हमारे इसमें जो नृत्य है, जो वाद्य यंत्र है, उन सब में ये सारी चीज भी कहीं ना कहीं प्रकट होती है। हमारे जो मेले हैं, हमारे जो तीर्थ व्रत उपवास हैं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, उसमें देश का हर समुदाय कहीं ना कहीं इसमें आस्था रखता है, मेलों में जाता है, हाट बाजार में जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ हमारे स्थानीय स्तर पर भी कई बड़े मेले हो रहे हैं, बेणेश्वर का मेला है, घोटिया अंबा का मेला है, कई शिवरात्रि के मेले हैं, बहुत सारे मेले साल में होते रहते हैं और हाट बाजार भी होते रहते हैं। तो उस बहाने आदिवासी कहीं कहीं तीर्थ व्रत में भी भाग लेता है, उपासना भी करता है और उसके साथ साथ मंदिरों में भी जाता है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उसका अपना एक महत्व है, कितने भी जातीय कठोर बंधन रहे हों, लेकिन ये जो मेले हैं, ये जो मंदिर हैं, ये हमें प्राचीन काल से ही सभी जातियों को उस एक जगह पर इकट्ठा करते रहे हैं और विविधता में एकता वाला ये जो सूत्र है, उस सूत्र के साथ में आदिवासी भी कहीं ना कहीं उससे अलग नहीं, उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक शाश्वत मूल्य है, उसकी जीवंत अभिव्यक्ति है। बहुत कुछ है मतलब आदिवासी समुदाय और संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में हम जितना बोले कम पड़ता है। इतने समय में हम हमारी संस्कृति के बारे में कोई मैं मत प्रस्तुत कर सकूं या उसका कोई चिंतन प्रस्तुत, उसका कोई दर्शन प्रस्तुत कर सकूं, ऐसा तो कोई मैं इस वार्ता में या मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। किंतु हम समय समय पर, हम सबका आज कर्तव्य बनता है कि हमारी संस्कृति के जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनको किसी रूप में हम उस समुदाय से जुड़े हुए हैं तो सभी के सामने लाएं। और जो विद्वान है, संस्कृति के अध्येता है, जो समाज के अध्येता है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप जो आदिवासी समुदाय का अध्ययन का जो नजरिया है उसको बदलें और बदलने के साथ में उसको देश की मुख्य धारा के साथ में आदिवासी को जोड़ें, ताकि आदिवासी भी अपने आप में इस देश की जो लोकतंत्र है, जो देश की व्यवस्था है, उसका हिस्सा समझ करके और उसके विकास और आगे बढ़ने में उसका हिस्सा समझे और अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: अभी आपने वार्ता सुनी कमलकांत कटारा जी से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। ये जी सुनी विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: लता मंगेशकर और भूपिंदर को आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से। गुलजार ने इस गीत को लिखा, मदन मोहन का संगीत। आज गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार गुलजार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। खट्टा मीठा फिल्म का नाम था। गुलजार ने इसे लिखा राजेश रोशन की तर्ज। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में ये गीत परिचय फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की

0: बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रूपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारी

0: सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिन्दुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार

0: भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:15 हुए हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कुछ दिन से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले जान लीजिए, मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट सोनाली। दोस्तों, आसमान कितना खूबसूरत और गहरा विषय है आज का हमारा, जो आज तो रिमझिम के साथ गुनगुना रहा है। सावन के इस पावन माह में अपनी अलग छटा बिखर रहा है। कभी उदास मन में आसमान की तरफ देखा होगा आपने भी, जरूर देखा होगा। उदास मन में कोई ऊंची राह दिखाता है तो जिन्हें देखकर इंसान अपने भीतर उड़ने की चाह महसूस करता है। आसमान सिर्फ नीला विस्तार नहीं है, बल्कि उन सपनों का नाम है

कभी यही आसमान सुबह की सुनहरी किरणों से मुस्कुराता है, तो कभी बादलों की चादर ओढ़कर चुप हो जाता है। कभी बारिश बनकर धरती को भिगोता है, तो कभी तारों से सजी रात में हमें अपनी विशालता का एहसास कराता है। आसमान हमें एक खूबसूरत सीख देता है, ऊंचाई पाने के लिए पंखों से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। इसलिए जब हमें हौसले की जरूरत होती है तो तब हमें अपने पिता की जरूरत पड़ती है, और जब हम उदास हो जाते हैं तब हमारी माँ हमें सीने से लगाकर वह हमें अपना हौसला बरकरार रखती है। इसलिए धरती की तुलना माँ से की गई है और आसमान की तुलना पिता से की गई है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दूसरों, आसमान केवल हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ विस्तार नहीं है, कहीं ना कहीं आसमान हमारे भीतर भी है, हमारे सपनों में, हमारी उम्मीदों में और उन इच्छाओं में जिन्हें हम दुनिया से छिपाकर अपने दिल में रखते हैं। किसी बच्चे से पूछिए कि आसमान क्या है, वह शायद कहेगा, जहां चांद रहता है, जहां तारे रहते हैं और जहां पंछी उड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आसमान का अर्थ बदलने लगता है। अब वह हमें अपने सपनों की याद दिलाता है, उन मंजिलों की याद दिलाता है जिन्हें पाने की हमने कभी कोशिश की थी तो कभी सफलता की ओर राह चल पड़े।

दोस्तों, आसमान की एक और खूबसूरती है, वह सबको बरकरार जगह देता है। अमीर हो या गरीब, शहर में रहने वाले हो या गांव में, ऊंचा हो या बुजुर्ग, आसमान सबके ऊपर एक जैसा फैला रहता है। सूरज की रोशनी किसी से भेदभाव नहीं करती, चांदनी किसी से उसका परिचय नहीं पूछती, बारिश धरती पर बरसते समय यह नहीं देखती कि कौन किसका है। प्रकृति हमें कितनी सरल भाषा में समानता का पाठ पढ़ाती है। आसमान कभी साफ होता है, कभी बादलों से घिर जाता है, कभी धूप, लेकिन क्या बादल आने से आसमान खत्म हो जाता है? नहीं, बस कुछ समय के लिए हमारी नजरों में ओझल हो जाता है। यही बात हमारे जीवन पे भी दोस्तों लागू होती है। हमारे जीवन में कभी खुशियों की धूप होती है और कभी परेशानियों के बादल। कभी लगता है कि सब कुछ और हमारे पक्ष में नहीं है, और कभी लगता है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। लेकिन याद रखिए, बादल कितने भी घने हो, आसमान अपनी जगह मौजूद रहता है। इसलिए मुश्किल समय में खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जिंदगी की भी आसमान की तरह ही है। हर पल बदलती हुई वो डोर हर रंग में खूबसूरत और हर मोड़ पर एक नई संभावना लिए हुए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार ऐसे बादल आते हैं जो रास्ता ढक लेते हैं, लेकिन बादलों के पीछे क्या छिपा? आसमान कभी खत्म हुआ है क्या? नहीं, लेकिन बादलों के पीछे छिपा आसमान हमें बहुत कुछ कहता है। इसलिए अगर आज जिंदगी थोड़ी धुंधली लग रही है तो ठहरिए मत,

अपने सपनों की ओर देखिए, क्योंकि आसमान हमेशा कहता है तुम्हारी उड़ान अभी बाकी है। तो आइए अपने सपनों को पंख दे, हौसलों को उड़ान दे और उस आसमान को छूने की कोशिश करें जो हमारी आंखों में नहीं है, हमारे विश्वास में बसता है। आसमान दूर जरूर है, मगर सपनों के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों तक आगे जाएं।

इसी गीत के साथ कुछ दिल से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फिर होगी मुलाकात कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुर सोनाली को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आपने कुछ देर से कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 8:45 होने को है। आप सुनेंगे राजस्थानी गीत। लीजिए सुनिए राजस्थानी गीत की पहली प्रस्तुति।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: अभी आपने राजस्थानी गीत सुने थे। इसी के साथ राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया गया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को ही आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को एमएसपी पर होने वाली खरीद प्रक्रिया से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक विभिन्न देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस दौरान पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विमर्श और चर्चाएं होंगी। भारत ने पहली बार देश के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर एक विशेष मार्गदर्शिका जारी की है। इसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यूएनसीसीडी के कॉप 17 सत्र में जारी किया गया। मार्गदर्शिका में भारत के घास के मैदानों, सवाना मरुस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक क्षेत्रों की जैव विविधता, पारिस्थितिकी महत्व और सामाजिक आर्थिक उपयोगिता को रेखांकित किया गया है। सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि घास के मैदानों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों को लंबे समय से पेड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर सामान्यतः कमतर आंका जाता है, जबकि ये क्षेत्र जैव विविधता, आजीविका और जलवायु अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने अजमेर में अपने बचपन का उल्लेख करते हुए पारंपरिक ओरण और गोचर क्षेत्रों को भी याद किया। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक विधानसभा में आज सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में 16वीं विधानसभा के 6ठे सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक से आपसी संवाद, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। प्रदेश में जिला क्रय विक्रय सहकारी समितियों की कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कोटा पहले, कोटपूतली बहरोड दूसरे और चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में परबतसर पहले, खींवसर दूसरे और सांगोद तीसरे स्थान पर है। सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने सचिवालय में सहकारी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने समितियों के गोदामों की जियो टैगिंग कराने और उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय उत्पादों और मिलेट उत्पादों की बिक्री बढ़ाने को कहा। एक अन्य बैठक में सहकारिता विभाग द्वारा कॉन्फेड के मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया गया है। श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में

0: ये काम किया जा रहा है।
1: केंद्र पर दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं उनकी संख्या 690 है और इसको कालांतर में बढ़ा के हम 2000 इसकी संख्या करना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मरीज यहां आता है तो उसको सभी दवाइयां मिल जाए, उसको इधर उधर न घूमना पड़े। और इसमें हमारी बाध्यता यह है कि जो जनऔषधि केंद्र से दवाइयां आती हैं वही दवाइयां हम यहां पे सेल करते हैं जो भारत सरकार से प्राप्त होती है। तो इसको पूरक के रूप में यहां पे कॉन्फेड की हम 6 शॉप्स विकसित कर रहे हैं जहां पे जो दवाइयां यहां नहीं मिलती तो वहां से ले सकेगा, जिससे कि जो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरा ऑनर हो सके और उसको सारी दवा मिल सके। इसमें हम ये भी पैकेज डेवलप कर रहे हैं कि जो ओल्ड एज के लिए जो मेडिसिन होती है उसका पैकेज भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो 400-500 रुपए में महीने भर की आपको डायबिटीज की भी, उसमें ब्लड प्रेशर की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी, हार्ट की भी, वो सभी दवाइयां पूरे पैकेज के रूप में मिल सके, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में कृषि क्षेत्र की डिजिटल मजबूती के लिए कृषि स्टैक को गति देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैठक में कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित करने और किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं में किसान आईडी अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 87,44,000 किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। जयपुर जिले के प्रगतिशील किसान मोतीलाल को जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किसान ब्रांड एम्बेसडर और ट्रेनर बनाया गया है। कृषि विभाग ने उनकी खेती के अनुभव और नवाचार को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी है। अब वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी देंगे। वे किसान प्रशिक्षण कार्यशालाओं और किसान संवाद कार्यक्रमों में अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। करौली जिले में जल संरक्षण और जल उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जा रही है। बारिश के पानी को सहेजने, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं हर घर जल पहल के तहत ग्रामीण परिवारों तक पेयजल पहुंचाने की दिशा में भी काम हो रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में 120 जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं पूरी की गई हैं, 33 से अधिक पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण और 62 वाटर शेड विकास कार्य किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। जिले के पांचना बांध, गंभीर नदी और स्थानीय तालाब बांधों में जल संरक्षण से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की दिशा में किए जा रहे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को और मजबूत कर रहे हैं। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री और वितरण पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने जुलाई और अगस्त में लिए गए नमूनों की जांच के बाद ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर विभिन्न जिलों के 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। विभाग के अनुसार इनमें घी, मसाले, नमकीन, दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल शामिल हैं। विभाग ने आमजन से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर और लेबल की जांच करने की अपील की है। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना देने का आग्रह किया गया है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को सतर्क किया है। पुलिस ने कहा है कि ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और फर्जी नोटिस या वारंट दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। पुलिस के अनुसार ऐसी कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है और भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की

0: 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 9:10 हो चुके हैं। आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में गई गैर फिल्मी गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आपने टून किया ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाई गैर फिल्मी गीत।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए गैर फिल्मी गीत यहीं संपन्न किए गए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 में है। आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: कहता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
0: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
0: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
0: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है?
0: श्रोताओ, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी।
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी।
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार

0: और एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
1: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित कर दिया था।
2: वाह, क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगिमा तो देखो,
2: पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: अद्भुत, कितनी प्रभावशाली,
2: अति सुंदर, अति सुंदर,
4: अति सुंदर, ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
5: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी

0: नर्तक हुआ करते थे।
1: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
0: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए। प्रणाम पिताजी।
2: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन

0: तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
1: लेकिन क्या पिताजी?
0: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
1: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
0: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
0: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं, और खासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियां अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूं, कभी वो हारमोनियम पकड़ू, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊं कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियां भी मुझे नहीं आती थी कहां से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहे, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये जरूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूंगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूंगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, चमचम, सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज खत्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा, अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, बचपन में ही उन्होंने अम्मा को एक लफ्ज कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे, अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूंगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपए 50 रुपए करके इनाम पाके। तो मैंने कहा, बाबू मैं, अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा, मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपए दे दिए, और एक पैसा न मुझे दिया न अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम, जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास

0: बात चाहिए कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
1: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तथ्य है, कैसे याद करूं? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूरी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो सब्जी पूरी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूरी 2 मात्रा, सब्जी पूरी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूरी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
0: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपनी शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
3: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
2: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
4: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
2: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
7: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
4: भगत सिंह।
8: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।

0: गालों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
1: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
1: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
4: भगवती भैया।

0: लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
1: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
3: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मन्यु जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आपने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार साहब पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती है।
1: जी।
2: अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
2: हाँ।
1: इस बारे में बताइए।
2: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
1: जो
2: दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन, तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन। मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 मंथ्स टू 9 to 12 मंथ्स बाय द टाइम यू कम बैक।
1: तो वो पूरा साल,
2: साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक,
1: मतलब क्या होता है,
2: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट।

0: नी वाली लिगमेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती
1: है, अखबारों में हम पढ़ते हैं।
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है। और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th मंथ दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
1: बताइए ये कितनी
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं, या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ ये बात करेंगे, लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द ज्वाइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो

0: क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है. तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें. अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए. अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है. फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
1: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं.
0: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है. सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है. हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं. तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड. अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है.
1: जी,
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड.
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए.
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है, इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं. ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इम्पोर्टेंट,
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात हो,
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है.
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है. और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
0: सही मात्रा
1: है ना, और
0: वो ही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच.
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए.
1: जी,
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए.
1: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
1: हाँ, दोनों चीजें
0: दो अलग हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं.
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं.
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है. ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी. ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी. अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शन और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं. मेनली विमेन में क्या होता है, इस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है. विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है. हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है. मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है. एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है. दूसरा है कि

0: बोन को ग्रो करने के लिए वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप, पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए. तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है. बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है. मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए. तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है. अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में. अगर अर्लियर ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है.
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग.
1: हाँ, लंबा
0: जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए.
1: बिल्कुल सही है. आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं?
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी.
1: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर. तेरा जिक्र है,
0: तेरा जिक्र है,
1: करेक्ट. क्या गाना है,
0: बहुत ही सुंदर.

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं। एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए। मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइन करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर वो आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल की जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा। और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको। वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो मैकेनिज्म भी
0: के बाद
1: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है
0: जी।
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
0: तो वो एक्टिविटी चेंज।
1: हाँ, अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग। उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की।
0: तो
1: अगर हम नियम से चलें कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
0: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की
1: मुश्किल है
0: ना पड़े।
1: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
0: जी,
1: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
0: क्या बात,
1: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला।
0: हाँ।
1: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
0: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
1: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट

0: करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है।
0: एक्सट्रीम है।
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में, मैंने ज्वाइन किया 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है, मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था, जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है, पहले पेन मैनेजमेंट होता है, अगर आप आए समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी,
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी।
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये प्रोसेस होती है, अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है
1: जी। तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपी।
0: हाँ, बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो या एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है
1: जी।
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इम्पोर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में, उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए
1: जी।
0: जैसे मैंने बोला इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट, सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा

0: अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी।
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब्ड टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से। तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था MBBS और उसके बाद MD या MS, नहीं मिला, एक दो मार्क्स से छूट गया।
1: अरे रे।
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग कोर्स, स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे, एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है, और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 to 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है।
1: जी,
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है, और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद BCCI, बट BCCI ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर। या सो या ही इज बीन अ प्लेजर, और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी। बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट

0: when he thought ki I should message.
1: Wow.
0: बहुत ही humble आदमी है. And proof is that he played for those 10 years that I was training. He played very well.
1: क्या बात है.
0: No, मुझे ये बोलना था कि ये profession मैंने चुना not by choice but by chance. But इसमें से pleasure मुझे बहुत मिला है. ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं.
1: क्या बात है. तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: होती
1: है.
0: मुझे कुछ अलग नहीं लगता है. नहीं, सच नहीं लगता है. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सेम. आई रियली डोंट फील बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी

0: बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है, कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाए
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है
0: तो अच्छा लगता है। दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स,
1: ऑफ कोर्स
0: बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी। एवरीबॉडी, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह,
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वो ही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। चूंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, चूंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल, तो
1: दंगल का,
0: का
1: गाना सुनवाते हैं, नैना।

0: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिडिल लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को।
1: जी,
0: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा।
1: जी, तो
0: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
1: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है।
0: मैं उसको सलाह दे के अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
1: जी,
0: हेमिप्लीजिया,
1: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत सर्जरी ध्यान रखने की जरूरत है।
0: हाँ, बहुत
1: सीरियस मैटर है,
0: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इम्पोर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है। मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट, फंक्शन, वो ही नहीं आता,
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन,
0: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा।
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है, एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस।
1: जी,
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हार्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी, अप टू 30 इयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 टू 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है, ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव हैं तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है, पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है, तो वीकनेस बच जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के, तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी,
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो
0: फ्रैक्चर की इसकी डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल, दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है।
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत
1: है,
0: ही बहुत जरूरी है, और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं, एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week used to come to clinic, and 95 he passed away, one day before that also he had requested home visit for exercise.

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेकर थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी,
1: उनको हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं। बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई

0: थे, इतना
1: सम पीपल आर रियली। और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
0: वाह वाह,
1: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे,
0: क्या बात,
1: ट्रेडमिल पे चलते चलते,
0: क्या क्या बात है, क्या बात है। जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ
1: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
0: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
1: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना, हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो, जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो,
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है। डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
1: थैंक यू वेरी मच,
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः 11 बज चुके हैं। आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं मेनी हसन और गुलाम अली की आवाज में गई गजलें।

0: हेलो
1: हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: अगली गजल आप सुनेंगे गुलाम अली की आवाज में।

सुगम संगीत के साथ गई ये सुगम संगीत का सफर यहीं थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 11:30 हुए हैं। अब आप लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम करेंगे अरिजीत सिंह और मनन भारद्वाज की आवाज में। संगीत मनन भारद्वाज का है। फिल्म है यार या टू।

लापता लेडीज फिल्म से भी आपने गीत सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रशांत पंडित के बोलते राम संपत का संगीत का। अगला गीत सुनिए समरा फिल्म से, केके की आवाज है, लक्ष्य साथ में लक्ष्मी मोहन, दीपक संगीतकार हैं।

न्यूज ऑन AIR, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे जावेद अली की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल हैं संगीत रवि का। फिल्म है भोला।

आइए गाते गुनगुनाते हुए फिल्म संगीत का अंतिम गीत हम सुनेंगे अश किंग और शेषा तिरुपति की आवाज में। संगीत प्रीतम का है, फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: शेषा तिरुपति और अश्किन की आवाज में गाये फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 12 बजने को है। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार

0: 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमा की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्टास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की।

ये सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।

0: अशोक भोसले की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

दोस्त सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आज की इबारत भी पोस्ट हुई और आप सभी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस शख्स को सलाम जो रात में खोलता है चांद की मिस्री, जिसका चांद पर कॉपीराइट है। उस शख्स को सलाम जिसे फूलों की बेलें अरबी में लिखी आयतें नजर आती हैं। उस शख्स को सलाम जिसने उम्र की लंबी सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो कलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया। उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया है, जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए 7 रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमीन पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि बिरहा की रात में जलना क्या होता है। देखिए ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम। और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही है। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोलें चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा। कुछ श्रोताओं ने से लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता है जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिखती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता है जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता है जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता है जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहां पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

गाना। एक और श्रोता है जो कह रही है कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था और साहित्य की जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वह है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद

आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखती है, एक था बचपन बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं है तो ये गाना भाव विफल कर देता है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता मेरे दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई श्रोता हैं। एक और श्रोता लिख रही हैं, गुलजार की आंखों में उदास उदास चमक उनकी आंखों पर अक्स डालती रहती है, यही उदास चमक उनकी शायरी का लहजा भी है। कई श्रोताओं ने जवाब दिया है कि गुलजार साहब को कुल 22 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। 22 फिल्मफेयर पुरस्कार, जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कीर्तिमान। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पिताजी याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि सुरीला सफर कार्यक्रम में आपने जो गुलजार साहब के गाने सुनवाए वो बहुत अच्छे लगे। कमेंट्स की इतनी लंबी लकीर आज है कि सभी कमेंट्स सुनना, सभी कमेंट्स पढ़ना भी मेरे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप में से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल किए जा सकें। एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने

0: गहराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है। और वो कहता है, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे, हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो, ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही है, सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो है वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं, तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने हैं, जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं, क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना, जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रखती चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ, कब से तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
2: क्यों कर रहे हो, कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहां नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीन पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं, और वो जो गाना है वही है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए, और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम?

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जीते जीते पोथो होले तेरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था। जीते जीते पोथो होले तेरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बंबई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है, मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बंबई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो होले देरी, क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला ये भी बताइएगा, और ये आवाज किस भी मिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती।

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हों, निराश हों या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं। वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना भी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना

चाहिए। तमाम श्रोताओं की कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था

सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये

एक श्रोता लिखती हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता है जो कहते हैं गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया, बताइए क्या कहें हम। किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा वक्त की जेब में सुराख बहुत है, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ उछल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता है, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा।

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल सुरीला सफर।

दो दूनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए छाओ छम से नीचे कूदी क्या पंक्ति है ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है।

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना फटाफट बताना।

0: की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं है। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहे। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। जियो आंखेनु सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता

0: आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
1: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे, तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया

0: से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होना चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुँचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड

0: उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेगतास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

0: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंद

0: सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा है नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका लेते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना
2: हैं। वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई, वाहन चलाया, दो पहिया, चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताएं? नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ, लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना,
2: डर बैठ गया
1: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी, तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में।
2: जी, और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक, इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना, रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं, हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं?
2: बिल्कुल। और जो ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे, क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर के अजाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है, बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरे पैदा करें।
2: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहें कि ना कहें, कोई

0: मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन, लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो, खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है, तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
0: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे, हम और मेरी जो बहन थी, हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे, फिर साइकिल पर बैठते थे, चलाते थे,
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती। तो साइकिल क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, तो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी, इसलिए
0: बिल्कुल वही हाल था। लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था, तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे, चढ़ते थे,
1: क्या बात
0: फिर वापस।
1: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उसपे बैठता था, और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उसपे बैठता था।
0: लेकिन कैंची, जो लड़के कैंची चलाते ना, वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया, चोट भी लगी।
1: तो खैर, ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था, और अपने अनुभव साझा करें। क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई, या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना, बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में तीन पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
0: बच्चों को जो साइकिल होती।
1: हाँ, तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो, तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ पर ये चलन नहीं है वहाँ पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, आया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार,
1: उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता। उनके मन में भरा होता है कि अरे बापरे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए। और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा

0: गिर जाऊंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसा आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
1: ना करने का एक फायदा भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते हैं। बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण कर जाते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े
0: रह जाता है उनके मन पर, रह जाती है
1: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक। तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो। अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकती।
1: हर चीज को इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते हैं, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं है, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा है। बेटियों में संस्कारों की छांव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है और उन्हें

0: ये एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है, और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं, घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें। कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
0: मार्शल आर्ट
1: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की, जिससे वो बताने में संकोच कर रही है क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाकर के चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
0: सही बात है, आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं, आत्मविश्वास से निडर बनाएं। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहां से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के 4th नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
1: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं। ये इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर है, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
0: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सके, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
1: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां 2 कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा।

0: ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी, आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
1: नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रहे हैं, लिखते हैं कि बच्ची, किशोरी, कुमारी, ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार क्षम कही जाती हैं, आकाश को लांघकर चांद तक जा पहुंची हैं। आज की दुनिया में अब रहन सहन, परिधान, बोली भाषा, आहार विहार, शिक्षा, इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छू में कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है। दया, क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक साक्षरता, अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। सुंदर सी बात।
0: हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूं मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या?

0: बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूं मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या?
1: थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेबी

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी, हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले न दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरे उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें। संस्कार उनकी पहचान बने, उन्हें से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा न करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
3: जी,
2: ये सुनते हैं ये गाना।

0: ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इन्फीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था, वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: इन्फीबीम के शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इन्फीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी, व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना, घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है। हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
0: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी, उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रूपये पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
1: और एक श्रोता ने

0: जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
1: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी। उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रूपये पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
0: और एक श्रोता ने लिखा

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना। और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया आ गया स्क्रीन आया कि नहीं आया, फिर नीचे से कोई बताता था नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है, अच्छा तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना वो बड़ा करारा होता था, बहुत ही
1: तक याद है वो रंग विभंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर

0: तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया जा रहा था और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना? तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
0: ये रंग में भंग पड़ गया। और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है, इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए, फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
0: तो ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया।
0: कैसा राउडी राठौड़ जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया।
0: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधा टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
0: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
0: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
1: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
0: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
1: जी,
0: आकाशवाणी जलगांव में?
1: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
0: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
1: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर का बहुत बोलचाला था।
0: जी जी।
1: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
0: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब

0: कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया
1: जी। और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
0: शुरू हो चुका है ये
1: जी
0: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है। और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है,
1: क्या बात,
0: तो आप वहां भी देख सकते हैं
1: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
2: जी मैं गलती से
1: मिली यशपाल जी से
2: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल फिर क्या हुआ?
2: बस फिर हमारे फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे फिर। फिर तो लड़ाई चलती रही।
1: अच्छा पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
0: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो 4थी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
0: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
1: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया।
0: 3 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा
1: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
0: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते तो ठीक है, उसको चलने रहने देते हैं थोड़ा सा
1: जी।
0: हाँ, लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
1: जी जी जी।
0: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
1: अरे
0: अच्छा। और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
1: अच्छा।
0: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही, अरे ये क्या करवा लिया,
2: कुछ तो, कुछ करवाते ही रहता
0: था। बता रहा था भाई, 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त, तो बोला 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे, वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात
1: जी। तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
0: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से
1: नैना लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना

0: ये गाना पिया तोसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो मैंने उठाया था
0: जी,
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
2: चल के जाए
1: हॉस्टल से वहां तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहां गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयां की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव।
0: अच्छा,
1: दिल्ली से जलगांव सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, अरे ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापिस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो।
0: अच्छा,
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं।

0: बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ। मैंने कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शब्द पैर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे।
1: अरे तो वो आर्य के वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है प्रतिभा जी, बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
0: हुई शाम का।

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपके जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे और उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे।

0: रहते थे,
1: रेपेट्री में
0: एज एन एक्टर काम करते थे, नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
1: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे?
0: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
1: दोनों लोग उसमें किरदार,
0: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में
1: जी,
0: मारिया
1: जी। यशपाल जी से हम जाना चाहते हैं, अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं, गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग प्वाइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे जिंदगी का एक टर्निंग प्वाइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस घूम करके, उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहां सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था, तो हम दोनों उसी में रहते थे। और वहां सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे, बहुत सारे, सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक स्ट्रगलर का अड्डा
0: था,
2: वो स्ट्रगलर सब लोग, क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे
1: जी।
2: तो वहां रहते थे हम, तो वहां हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई काम खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं
1: जी जी।
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं, तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
1: अच्छा,
2: क्रिश्चियन लड़की का
1: जी।
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष गोवारिकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है, मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं,
1: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे, मैं कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मैंने थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा ऑडिशन देंगे ना, तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
1: क्या बात है।
2: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए, तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन। उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, एआर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो होगी बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से
1: जी जी,
2: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा। अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ

0: ट्रेनिंग 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है, कितनी प्यारी बात है।
0: रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है।
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान।

0: उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारी करने सबको
0: जी।
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी तो वो उसी दिन मैं गया था और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी 6 या 7 से
0: जी।
1: तो एक हफ्ता हम वहां पूरे गांव में घूमते थे मीटिंग करते थे और आशुतोष ग्वारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो लकड़हारा हो और यहां लकड़ियां इकट्ठी करते हो और फिर गांव में एक कोई जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था और यहां से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
0: अच्छा, क्या बात?
1: गौरी को देखने के बहाने
0: जी, जी, जी।
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है हीरोइन उसको चाहती है तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूं अब इसके लिए मैं देश को धोखा दे रहा हूं वो एक एहसास हुआ और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
0: जी।
1: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे भारतीय परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर। वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे
0: जी।
1: ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए जो कि लगान में उन्होंने किया।
0: बिल्कुल,
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था
0: जी। और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
1: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
0: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर।
1: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग।
1: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगी प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: नहीं वो
0: तो
1: नहीं देखनी, ये ही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो?
1: सौम्य, सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे एक ऐसा हीरो आ गया है जिसने सबको फेल कर दिया, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।
1: ऋतिक रोशन की पहली फिल्म जो थी
2: कहो ना प्यार,
1: कहो ना प्यार है।
2: है? तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
0: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेन कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल, तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है, तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
1: नहीं हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करके आए थे, तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजेन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी, तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे, रघुवीर यादव,
2: रघुवीर
1: यादव
0: जी
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी जी, तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे?
1: नहीं तब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी, मनोर लोकेशन वहीं होटल ले रखा था हमने,
0: जी जी जी
2: सब लोगों ने,
0: अच्छा
2: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहते, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते,
1: लेकिन
2: बच्चे
1: बहुत
2: भी साथ
1: में थे, बहुत सुंदर थी वो फिल्म।
0: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी?
1: तो उस वक्त तो मतलब छोटे थे ही ऑफकोर्स, तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ फोन ही कर सकते हैं,
0: बच्चे जब मिलते थे रोते थे तो फिर दिल
1: नहीं, रोते भी थे नहीं थे वो, बड़े उस तरह के बच्चे है कि मतलब समझदार है,
0: उनको पता था कि
1: उनको पता था
0: आगे बढ़ना है।
1: पर एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छम्मक छल्लो लग रही हो ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला
0: जी जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं टेलीविजन से सीखते हैं, तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है।
1: हाँ, उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की जो जी सीरीज आई थी प्रेमचंद के ऊपर। तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी।
2: पंकज कपूर के साथ
1: कपूर
0: जी
2: के साथ काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था एक्सपीरियंस, उनके साथ कोई बात बताइए, उनके साथ अनुभव कुछ।
1: मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह और शुरू हो जाते थे यहाँ से लकड़ी उठाओ, ये करो, इसको ये ठीक करो। मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो। मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे, यहाँ पे, वहां पे। और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार, बस
0: अच्छा।
1: मेरा दिन बन जाता है। फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें है वो उनका, वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना, वहाँ गांव गांव था ना,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ, उस वक्त अच्छा, सौ में पेट में था। हाँ
0: जी,
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी,
2: पहने हुए ही पैदा हुए, कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने।
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग है, उनकी फिल्मों के कितने सारे रंग है, लेकिन उन्होंने खुद पर कोई रंग नहीं डाला। तो अब हम यशपाल जी की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। पहले फिल्मों की बात करें या हमें लगता है कि हरियाणा की ओर चलते हैं, हिसार की ओर, बचपन की ओर चलते हैं। यशपाल जी बताइए, बचपन में बड़े शरारती किस्म के थे हमने कहीं सुना है, और वो शरारतें क्या थी जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी।
2: हमारी शरारतें क्या होती थी, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए, मूलियां चुरा ली, गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया,
0: अरे
2: लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह

0: इकट्ठी करके गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल तक पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कटम्बर लोहा लंबर, कोकला खिपा खि जमेरात आई जे, जेड़ा अगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम है जो फिर वो डिब्बिया ढक्कन ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था, कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा करना, गुठलियां, हाँ इमली की गुठलियां, वो भी बहुत, हाँ बहुत कीमती चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ इसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे, बेशक पैसा नहीं था लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूं अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए। काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस
1: जी,
0: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा था वो
1: है, मालगुडी डेज,
0: मालगुडी डेज, यस, गालिब का एक सीरियल था,
1: मिर्जा गालिब,
0: फौजी, शाहरुख खान वाला, फिर वो एक दो और थे जो सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें।
1: तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे, तब उसमें मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे सीरियल के नाम से हम लोग, हाँ हम लोग से याद आया,
0: बुनियाद
1: की बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है, मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खासतौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है? तो
0: नहीं, बिल्कुल इसका मतलब

0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब तो और ज्यादा खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब है कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी है जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी और शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है।
0: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया जिसमें मुकेश तिवारी भी है?
1: अच्छा, वो बड़े न खेले छोटे खेल।
0: जी जी।
1: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है
0: जी।
1: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया, फिर आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया, तो ऐसा उसका प्रोसेस था और कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ, मतलब एक दिन मैं करता था एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो
0: जी।
1: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ या
0: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगाजल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगाजल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
1: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो
0: जी,
1: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, कर ली मैं बात हो गई, तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो लो। तो मैंने वहां बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
0: जी।
1: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी मैं करूंगा, हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज्यादा, और लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे और हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन क्या एक्चुअली में
0: जी।
1: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया
0: जी।
1: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उसपे
0: जी। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाया हम?
1: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने, हाँ। आंख फोड़ने वाला बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी।
1: मेरी वाइफ ये प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे रावड़ी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मुझे, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
0: जी, जी जी, क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए
2: डोली में बिठाई के का।
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी सायंकालीन सभा में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण से।

अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक। वहीं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुन पाएंगे प्रातः साय 6:15 पर। गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे रात 10:00।

वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और वहीं 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार।

हमारे कल की प्रातःकालीन सभा में प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान और 6:45 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती नी बात। वहीं वाकड़ी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। वहीं दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं राजस्थानी लोक संगीत आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:45 पर। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर एवं प्रातः 11:00। वहीं सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे प्रातः 11:30 पर। प्रातः 9:30 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा उमंग का। प्रातः विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10:00 एवं दोपहर 12:00। वहीं जयपुर से प्रातः समाचार आप सुनेंगे प्रातः 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं प्रातः 9:00 आप सुनेंगे जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक।

0: सारे लोग कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सभी बहनों को आपकी बहन सीमा जैन का प्यार भरा नमस्कार। दिन भर की इस भाग दौड़ में खुद को भी थोड़ा वक्त दिया करो। दूसरों की खुशियों के लिए जीते हो, कभी अपने मन की भी सुना करो। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खुद से भी रिश्ता प्यारा है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा मुस्कुराओ, जीवन तभी तो लगे न्यारा है। जी हाँ बहनों, आज की हमारी बातचीत का विषय है स्वयं के लिए समय निकालने। तो आइए बहनों सुने आज की बातचीत आज के खास मेहमान के साथ। बहनों, आज की बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं आज की खास मेहमान ज्योतिका जैन। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरखिया पाड़ा झुपेल में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार ज्योतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी लोक में।
1: नमस्ते सीमा जी।
0: ज्योतिका जी, जैसा कि आज की हमारी बातचीत का विषय है स्वयं के लिए समय निकालें, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप स्वयं के लिए कितना समय निकाल पाती हैं?
1: सीमा जी, मैं अपने लिए समय की क्या बात कहूँ, मेरे लिए एक गंभीर विषय है ये। मैं अपनी जॉब के अलावा अपने बच्चों यानी तीन बच्चियां ही मेरी, जिसमें दो जुड़वा है, उसमें और मेरे परिवार की जिम्मेदारियों में अपना समय निकाल देती हूँ। स्वयं के लिए तो एक मिनट का समय नहीं मिल पाता है। चाहती तो बहुत कुछ हूँ मैं कि मेरे बचपन की जो रुचियां हैं उनको वापस से मेरे जीवन में उभारूं, और जैसे जैसे चित्र बनाना मुझे शौक है, अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाना मुझे अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा मुझे अपने बचपन के जो दोस्त हैं उनसे मिलना, उनसे फोन पे बातचीत करना बहुत पसंद है। परंतु मेरा पूरा समय घर के काम में और उनके जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ही बीत जाता है। कब सुबह होती है और कब शाम होती है तो मुझे पता ही नहीं चलता है। अक्सर क्या होता है कि महिला अपने दिन की शुरुआत भी दूसरों के जरूरतों को पूरा करने में और दिन को खत्म भी दूसरों की चिंता में ही निकाल देती है। उनका पूरा दिन कैसे व्यतीत हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। जैसे सुबह उठते ही भागा दौड़ी में बच्चों का टिफिन तैयार करना, परिवार के लिए नाश्ता बनाना, घर संभालना, नौकरी या कोई भी वो कार्य करते हैं उसकी जिम्मेदारी निभाना, और फिर वापस से लौटकर उन्हीं कामों में अपने को व्यस्त कर देना। और यही सूची कि पूरे दिन क्या करना है, कल क्या सब्जी बनानी है, क्या काम बाकी है, कुछ करो नया, कुछ बच्चों को खुश रखने के लिए, पति को खुश रखने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ तरीके सोचती रहती है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं सोचती। वो बस पूरा दिन उन्हीं के कामों में व्यस्त रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योतिका जी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्वयं के लिए तो क्या, बल्कि हम कुछ जरूरी कामों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में ज्योतिका जी हमारी बहनों को बताएं कि स्वयं के लिए समय निकालना क्यों जरूरी है।
1: सीमा जी, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्वयं के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। स्वयं को समझे, पहचाने व अपनी रुचि का कार्य करे। आपकी अपनी भी एक पहचान है, अपने भी सपने हैं और अपनी भी खुशियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, कुछ नहीं करना भी कभी कभी जरूरी होता है। अक्सर महिलाएं अपनी पसंद, अपनी रुचि और अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है। क्यों ना उन रुचियों के लिए फिर से थोड़ा समय निकाला जाए। स्वयं के लिए समय निकालने का अर्थ स्वयं को समझना भी है, स्वयं को महत्व देना भी है और स्वयं के लिए सम्मान प्राप्त करना भी है। जिम्मेदारियां तो कभी खत्म होंगी ही नहीं, इसलिए अपने सपने पूरे करने का प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें।
0: जी ज्योतिका जी, आपने सही कहा। हमारी बहनों को अब ये बताएं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने लिए समय वो कैसे निकाल सकती हैं।
1: सीमा जी, महिलाओं को अपने लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी कुछ समय चुरा कर

0: कुछ काम परिवार या बच्चों में छोटे छोटे काम को बांट दे और अपने समय निकाल ले। जैसे सीमा जी, मैं अपनी ही बात लेती हूँ, जैसे मुझे अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाने का शौक है, फिर चित्रकला में शौक है, तो ये मुझे घर पर तो समय नहीं मिल पाता है, परंतु मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल में अपने बच्चों के साथ चित्र बनाना है, उपयोगी वस्तु बनाना है, ये कार्य करती हूँ, तो उनको भी ये नई चीजें सिखाती हूँ और अपनी रुचि को आगे बढ़ाती हूँ। इसमें उनको भी अच्छा लगता है और मेरा भी मन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको भी अपने ऐसे तरीके से जो भी आपकी रुचि है उसके लिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी समय निकालकर अपनी रुचि को, अपनी पसंद को पूरा करना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने ज्योतिका जी। चलते चलते आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सीमा जी, बहनों को यह संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभाएं, लेकिन सबसे पहले स्वयं के लिए उत्तरदायी बने, खुद को महत्व दें, खुद को खुश रखें और अपने सपनों के लिए समय निकालें, क्योंकि आपकी भूमिका केवल माँ, बेटी, बहन, पत्नी या गृहिणी की नहीं है, आपकी भी अपनी एक पहचान है। हमेशा याद रखें कि कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, परंतु हमें समय निकालना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से हमारे मन को ऊर्जा मिलती है। तो आज से ये संकल्प ले कि भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकाले और खुश रहे, स्वस्थ रहे, हम खुश तो परिवार भी खुश, बच्चे भी खुश।
1: बहुत ही सुंदर संदेश ज्योतिका जी आपने हमारी बहनों को दिया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सीमा जी, आपने मुझे आपके इस रेडियो कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: पहले ये थी बातचीत ज्योतिका जैन के साथ। बातें अभी और भी हैं बहनों, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पल बीत जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं, पर एक खूबसूरत तस्वीर उन पलों को फिर से जीवंत कर जाती है। बहनों, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। इसके लिए हम उन क्षणों की फोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि जब चाहे हम उन क्षणों की याद को ताजा कर सकें। इस विशेषता के कारण ही हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। मेरी फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। यह केवल तस्वीर खींचने का ही नाम नहीं है, बल्कि यह किसी पल, किसी उत्सव, किसी भावना और याद को भविष्य के लिए संजो लेने की कला है। इस तस्वीर में किसी की मुस्कान, किसी की खुशी, पीछे छूटती उम्र की यादें, परिवार और मित्रों का साथ या जीवन का कोई विशेष क्षण सुरक्षित रह सकता है। फोटोग्राफी काफी पुराने समय से चली आ रही एक तकनीक है बहनों, जिसमें समय समय पर इसके उपकरणों में अनेक बदलाव हुए हैं। जहां पहले ये काफी मुश्किल और समय लेने वाली होती थी, वहीं आज एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल के माध्यम से एक क्षण में बहुत सी फोटो खींच सकता है। महिलाओं के जीवन में भी फोटोग्राफी की खास भूमिका है। घर परिवार के खूबसूरत पलों को संजोने के साथ ही महिलाएं फोटोग्राफी को अपने हुनर के रूप में भी अपना सकती हैं। प्रकृति, लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, त्योहार और रोजमर्रा के जीवन की तस्वीरें अलग अलग समय की कहानी कहती हैं, और ये कहानी आने वाली पीढ़ियों तक एक संस्कृति की पहचान के रूप में आगे तक पहुंचती हैं। बहनों, तस्वीर लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिसकी और जिसके साथ तस्वीर ली जा रही है उसकी अनुमति हो, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में किसी की निजता या सम्मान प्रभावित ना हो। तो आइए बहनों, इस विश्व फोटोग्राफी दिवस पर केवल तस्वीरें ही नहीं खींचे बल्कि इस कला का सम्मान करें। उन अच्छे पलों को महसूस करें जब आपने ये तस्वीरें खींची थी, और इन्हें एक जिम्मेदारी के साथ साझा करें। बहनों, बातें अभी और भी हैं, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं फिर से एक प्यारा सा गीत।
3: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी गुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

बहनों, फोटोग्राफी की ही एक देन है सेल्फी। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई ये चाहता है कि उसकी अपनी व्यस्त दिनचर्या में आनंद के कुछ ऐसे क्षण जी सके जो उसके लिए यादगार बन जाएं। ऐसे में अवकाश मिलते ही दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या परिवार के साथ पिकनिक का प्रोग्राम भी बन जाता है। अपनों का साथ फुर्सत के पल सुकून और आनंद देता प्राकृतिक या ऐतिहासिक जगहों का वातावरण, खाने पीने का स्वादिष्ट सामान और इन सब के साथ ही शुरू हो जाता है इन क्षणों को कैमरे में कैद करने का दौर, ताकि इन यादगार पलों को भविष्य में देखा जा सके, याद किया जा सके और आनंद का एहसास किया जा सके। आधुनिक समय में मोबाइल सेल्फी का क्रेज बहुत अधिक बढ़ गया है बहनों। तरह तरह के पोज बनाकर अलग अलग जगह जाकर सेल्फी लेने की एक होड़ सी मच जाती है। पिकनिक स्पॉट्स पर पिकनिक का आनंद लेने के बजाय सेल्फी लेते लोगों का नजारा बहुत ही आम है। बहनों, सेल्फी लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, जिससे हम सुरक्षित रहें और किसी दुर्घटना या हादसे का शिकार न होने पाएं। यदि आप किसी पानी वाले स्थान पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सेल्फी के चक्कर में ज्यादा गहरे या तेज बहाव वाले पानी की ओर न जाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां आप खड़े हों

वहां फिसलन या ऐसी खतरनाक ऊंचाई या ढलान ना हो जहां से गिरकर चोट लगने का खतरा हो। यदि आपके साथ छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हों तो अच्छा तो यही होगा कि आप एक सुरक्षित और समतल जगह पर खड़े होकर या बैठकर शांति से सामूहिक सेल्फी लें। अक्सर महिलाएं साड़ी या चुन्नी आदि पहनती हैं, तो ऐसे पहनावे के साथ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं झाड़ी पेड़ आदि के पास सेल्फी लेते समय ये उसमें उलझ न जाए जिससे गिरने का खतरा न बन जाए। बहनों, सेल्फी लेते समय अपने आसपास के वातावरण और लोगों का भी ध्यान रखें। अक्सर ऐसा देखने सुनने में आता है कि आप तो सेल्फी लेने में डूबी हैं और कोई आपका मोबाइल आपके हाथ से खींचकर चलता बना। ऐसे में आपका मोबाइल और उसमें सुरक्षित सारी जानकारी तो जाएगी ही, साथ ही धक्का लगने से गिरकर आपको चोट भी लग सकती है। कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर कमजोर दीवार या रेलिंग के सहारे खड़े होकर किसी पुल पर या फिर सीढ़ियों में चलते वाहन पर किसी एक ओर विशेष रूप से झुककर सेल्फी लेने का प्रयास बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर आपका जरा सा भी ध्यान भटकने पर संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। वो आए दिन हम समाचार पत्रों में या टीवी पर अक्सर पढ़ते और देखते हैं कि विशेष रूप से किशोर और युवावस्था के दौर से गुजरने वाले बच्चों में सेल्फी का क्रेज अधिक होता है। वे ज्यादा लाइक्स या दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने के लिए उतर जाते हैं जहां जाना जानलेवा साबित होता है। एक आकलन के मुताबिक सबसे अधिक सेल्फी लेते समय मौतें भारत में हुई हैं और इनमें भी सबसे अधिक युवा मौतें हुई हैं। इसलिए बहनों, हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सेल्फी लेते समय होने वाले खतरों से आगाह करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वे दूसरों की देखा देखी कोई खतरा मोल न लें। अपने अवकाश और आनंद के क्षणों को मजे से बिताएं, सेल्फी जरूर लें, लेकिन अनावश्यक रूप से इसमें समय बर्बाद न करें और न ही किसी हादसे या दुर्घटना को न्योता देकर तनावपूर्ण या दुखद बनाएं। और बहनों, अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को समाप्त कर विराम लिया जाए। तो चलते चलते जीवन के खूबसूरत पलों को तस्वीरों में संजोएं और उनके पीछे से छिपे स्नेह को महसूस करें। तब तक मुस्कुराते रहिए बहनों। अगली बार मिलेंगे फिर एक नए विषय और नई सोच के साथ। इसी के साथ आज्ञा दीजिए आपकी बहन सीमा जैन को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: थोड़ी ही देर में

कार्यक्रम तारानी नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए उद्भव मनोहर शिट्टे, श्वेता पंडित, सोनाली प्रीता मजुमदार और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार है जतिन ललित, फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है कारवां।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
2: मैं यहां।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: गुलजार का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में। संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम है हू तू तू।

गुलजार का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है बॉबी।

समीर का लिखा गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाजों में। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम है जुनून।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए,

0: तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंजम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: जीना दिला, हे आला दिला, बदली दुनिया के आया नया।
3: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
4: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
3: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
4: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, मेरी

0: नीमा का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
0: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडीकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है ज्योति।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमारा फोन नंबर है
2: 9414066730। जी हाँ, 9414066730। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज हम गर्व से कहते हैं हम आजाद हैं। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ आजाद देश में रहना ही आजादी है? श्रोताओं, अगर हमारे पास कोई गरीब भूखा सो रहा हो, कोई बच्चा शिक्षा की जगह मजदूरी कर रहा हो, या किसी लड़की को उसके सपनों के लिए रोका जा रहा हो और हम गलत होते हुए भी चुप रहें, तो क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आज एक सवाल है, मैं अपने देश की आजादी को अपनी जिम्मेदारी में कैसे बदल सकता हूँ? तो श्रोताओं, आइए सुन

0: सुनते हैं एक छोटा सा नाटक।
1: माँ जल्दी से सफेद कुर्ता निकालो, आज इंडिपेंडेंस डे है, मैं दोस्तों के साथ झंडा फहराने जा रहा हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जाने से पहले नाश्ता तो कर लो।
1: नहीं माँ, देर हो रही है, आज देशभक्ति दिखानी है।
2: देशभक्ति सिर्फ आज के दिन दिखाई जाती है क्या?
1: माँ अब लेक्चर मत दो, झंडा फहराना है, राष्ट्रगान गाना है, फोटो भी डालनी है, बस।
2: बस?
1: हाँ।
2: फिर एक काम करना, रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना।
1: मतलब?
2: आज देखना कि तुम्हारे देश में कौन कौन आजादी का इंतजार कर रहा है।
3: आरव, अरे आरव इधर आ, पहले सेल्फी ले लेते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: हाँ भाई एकदम शानदार।
0: तभी एक छोटा बच्चा पास आता है।
4: भैया भैया कुछ सामान ले लो, सुबह से कुछ नहीं बिका।
3: अरे यार परेशान मत करो, आज इंडिपेंडेंस डे है।
4: भैया मेरे लिए भी तो आज इंडिपेंडेंस डे है।
1: तुम स्कूल नहीं जाते क्या?
4: पहले जाता था, अब पापा बीमार है, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है।
1: लेकिन तुम्हारी उम्र तो पढ़ने और खेलने की है।
4: पढ़ना तो मुझे भी अच्छा लगता है भैया, लेकिन मजबूरी आजादी से बड़ी लगती है।
3: चल चल आरव, हमें देर हो रही है।
1: नहीं राहुल, आज मुझे देर नहीं करनी।
3: कहाँ कहाँ जाना है?
1: पहले से कुछ खाने को देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
2: आ गए झंडा फहरा के, कैसे रही?
1: माँ आज समझ आया कि देशभक्ति क्या है।
2: बेटा क्या समझ आया?
1: देश से प्यार करना सिर्फ झंडा लगाने या सोशल मीडिया पर आई लव माई इंडिया लिखने से नहीं होता।
2: तो
1: देशभक्ति तब है जब हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें, जब हम किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाएं, जब हम किसी लड़की को उसके अधिकारों से वंचित ना करें, जब हम बच्चे को मजदूरी की जगह शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, और जब हम धर्म भाषा जाति या क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय इंसान को इंसान समझें।
2: बेटा अब तुमने सच में स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
0: दोस्तों हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे युवा नए सपने देख रहे हैं, भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, गरीबी बेरोजगारी बाल मजदूरी महिलाओं के प्रति भेदभाव हिंसा नशा भ्रष्टाचार मिस इन्फॉर्मेशन और समाज में बढ़ती दूरी। श्रोताओं इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, जी हाँ हम सबकी भूमिका है। देश हमारा है, समाज हमारा है और जिम्मेदारी भी हमारी है। सच्ची देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की कमियों को छुपाएं। सच्ची देशभक्ति का मतलब है कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए अपना छोटा सा योगदान देना। अब समय है आज के स्वतंत्रता दिवस के चैलेंज का, जो आपको करना है। श्रोताओं इस बार चैलेंज सिर्फ सोशल मीडिया पर झंडे की फोटो लगाने का नहीं है या फिर आई लव माय इंडिया कहने का नहीं है, परंतु इस चैलेंज का नाम है एक दिन एक जिम्मेदारी। जी हाँ एक दिन एक जिम्मेदारी। आज से अगले 7 दिनों तक हर दिन अपने देश के लिए एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो चैलेंज है किसी जरूरतमंद व्यक्ति

की मदद करें, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, अपने आसपास की गंदगी साफ करने में योगदान दें, या किसी महिला या लड़की के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठाएं, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया पर कोई झूठी या नफरत फैलाने वाली खबर आगे ना भेजें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आपका मतभेद है और सम्मान के साथ उसकी बात सुने। और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये है कि आज किसी एक व्यक्ति से पूछिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। श्रोताओं, हो सकता है आपका छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरा देश महान है, लेकिन देश महान केवल उसके इतिहास से नहीं बनता, देश महान बनता है उसके नागरिकों से। जब एक युवा गलत रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब एक लड़की को शिक्षा और अपने सपनों का अवसर मिलता है, तब भारत मजबूत होता है। जब एक बच्चा मजदूरी से निकलकर स्कूल जाता है, तब भारत मजबूत होता है। या फिर जब हम भ्रष्टाचार को अरे चलता है कहकर स्वीकार नहीं करते, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जी हाँ, तब भारत मजबूत होता है। और जब हम कहते हैं ये समस्या मेरी नहीं है की जगह जब हम कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तब असली बदलाव शुरू होता है।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक कविता सुनेंगे जिसका शीर्षक है मेरा भारत। और श्रोताओं, ये कविता हमारे साथ साझा करेंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद एना। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक कविता मेरा भारत। मेरा भारत सिर्फ नक्शे पे बनी एक तस्वीर नहीं, यह करोड़ों दिलों की धड़कन है कहीं। यह खेतों में मेहनत करता किसान है, सीमा पे खड़ा वीर जवान है। यह माँ की आंखों का सपना है, बच्चे की मुस्कान का अपना है। यह मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की सेवा, चर्च की प्रार्थना का सम्मान। ये अलग अलग भाषा, अलग अलग पहचान, फिर भी दिल से एक यही है हिंदुस्तान। पर मेरे भारतवासियों से एक सवाल है आज, क्या हम सच में समझते हैं आजादी का राज? अगर कोई भूखा है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर कोई डर में जीता है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर बेटी को सपने देखने से रोका जाए, अगर बच्चे के हाथ में किताब की जगह काम थमाया जाए, अगर नफरत हमारे दिलों में घर कर जाए, तो तिरंगा ऊंचा होकर भी क्या कह पाए? आओ आज एक वादा करें, अपने हिस्से का उजाला करें। जहां अन्याय दिखे वहां आवाज बनेंगे, जहां नफरत मिले वहां प्यार चुनेंगे। किसी गिरते को हाथ देंगे, किसी रोते को साथ देंगे। भारत को केवल महान कहेंगे नहीं, भारत को महान बनाने में अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि देश सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, देश हम हैं, देश आप हैं और देश मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत।
0: श्रोताओं, ये थी आज की कविता, जी हाँ, जिसका शीर्षक था मेरा भारत। श्रोताओं, आज आइए एक छोटी सी प्रतिज्ञा लें। मैं अपने देश से प्यार करूंगा, मैं अपने आसपास के लोगों का सम्मान करूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगी, मैं बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को महत्व दूंगा, मैं महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करूंगा, मैं नफरत और झूठी जानकारी फैलाने से बचूंगा, और सबसे बढ़कर मैं केवल अच्छे भारत का सपना नहीं देखूंगा, बल्कि उसे बनाने में अपना योगदान भी दूंगा। जी हाँ श्रोताओं, आजादी हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इस आजादी को जिम्मेदारी में बदलना हमारी पीढ़ी का काम है। आइए इस

0: इंडिपेंडेंस डे इस स्वतंत्रता दिवस के दिन पर झंडा जरूर फहराइए, लेकिन अपने दिल में भी एक झंडा फहराइए। जी हाँ, ईमानदारी का, एकता का, सम्मान का, न्याय का और इंसानियत का। श्रोताओं, क्योंकि देश हमसे है और भारत का भविष्य हमारे आज के फैसलों से बनेगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, अब समय है आपका। जी हाँ, आपका, इसलिए क्योंकि हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें अपने नाम भेजे हैं ताकि हम कार्यक्रम में उन्हें सुनाएं। ये ऐसे श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों के साथ हमारे कार्यक्रम को साझा करते हैं। तो श्रोताओं, हमारे श्रोता है राम नरेश सिंह यूपी सीतापुर से, नीता मिश्रा यूपी सीतापुर से, आशा, दिव्या और कृष्णा गोरखपुर से, जगदीश प्रसाद जी बाराबंकी से, अंकित उन्नाव से, फरजाना बिहार मुजफ्फरपुर से, योगेश कुमार सीतामढ़ी से, राधिका नवादा से, रामदेव महतो खगरिया से और नासिर अली मधुबनी से। आप सब श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और दूसरों के साथ भी इसे साझा करते हैं और समाज में बदलाव के लिए, समाज के सुधार के लिए हमारे कार्यक्रम को दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर से 2340 करोड़ रुपए के 941 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की, सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश को 2340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 941 शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। जयपुर में एचसीएम रीपा में आयोजित कार्यक्रम में श्री शर्मा ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के 1,32,000 से अधिक लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी की। इस दौरान श्री शर्मा ने 71 पीएम ई बसों को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में सुरक्षा सखी और युवाओं के साथ संवाद भी किया। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन के लिए कानून व्यवस्था का पुख्ता होना जरूरी है।
1: आज का यह कार्यक्रम सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

0: भावना यह सोच हमारी कार्य प्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में हर वीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं, ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं, समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
1: मुख्यमंत्री ने इससे पहले वीसी के जरिए राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को हर जन परिवेदना का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेने और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने विभिन्न जिलों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के परिवादियों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में करवाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आज जयपुर में सर्वदलीय बैठक हुई। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले छठे सत्र से पहले आज ये बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदस्यों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परम्पराओं को सशक्त करने का माध्यम है। सदन का सुचारू संचालन सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री देवनानी ने भी आश्वस्त किया कि चर्चा में बोलने का सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान मौजूद रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के डॉ सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार न्यांगली, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी उपस्थित रहे। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कहा कि मर्यादापूर्ण तरीके से सदन में बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा से फर्जी फसल बीमा कराने की सूचना जांच में सही पाई गई। इसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले इन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन किसानों ने भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर नकली पॉलिसी बनाई थी। इसके अलावा वास्तविक क्षेत्रफल फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था। श्री गोयल ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां जारी करने में शामिल ई मित्र संचालकों, दलालों और बीमा कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 53 RAS और 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। साथ ही नए पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला सूची में राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव सहित कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक कलेक्टरों को बदला गया है। नए प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संबद्ध करते हुए प्रशासनिक और चुनावी जिम्मेदारियों से जोड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की गई है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर में उपाधीक्षक सुधीर चौधरी ने निजता का ध्यान रखने और फेस ऑथेंटिकेशन की सुरक्षा का उपयोग करने की सलाह दी है।
2: लोग अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि यूज करते हैं और उस पर प्राइवेसी का वो ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से साइबर क्राइम फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाकर रखना चाहिए। आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऑप्शन आता है वो आपको रखना चाहिए। और जो साइबर फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है OTP द्वारा। OTP मांगने के भी कई तरीके होते हैं। लोग बैंक फ्रॉड के नाम पर, KYC के नाम पर कोई लिंक भेजकर या कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया बोल करके OTP आपसे मांगते हैं और OTP देने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। फिर आपको काफी लंबे समय के बाद इन चीजों का पता लगता है।

0: और आप अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई की ओर से आज अयोध्या साइबर क्राइम थाना के 4 पुलिसकर्मियों को 2,80,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इन आरोपियों ने अयोध्या में दर्ज एक मुकदमे में से परिवादी के भाई का नाम हटाने की एवज में रिश्वत की ये राशि मांगी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। हालांकि तेज बारिश में कमी आई है। दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर और धौलपुर सहित 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। 20 से 23 अगस्त के दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। उधर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2-4 दिन मानसूनी गतिविधियां सुस्त रहने के आसार हैं। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून का अगला चरण अलनीनो के प्रभाव के कारण कमजोर रह सकता है। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में पौधरोपण के व्यापक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव रखा गया। न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में हुए इस कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए जन भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उधर जैसलमेर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर हरित राजस्थान का संदेश दिया। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों की 500 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन सिलिकॉन 2 सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम की थीम पर रखा गया है। श्री कृष्णन ने कहा कि सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें महिला बैडमिंटन डबल्स की प्रमुख जोड़ी ट्रीसा जॉली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसा याहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक मोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कॉरपोरेट संस्था और गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। प्रदेश में ई मित्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं का दायरा अब 51 से बढ़ाकर 103 हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए नागरिकों के लिए 100 से अधिक सरकारी सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से 2,340 करोड़ रुपए के 941 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की। सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज

कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बांकी बिहारी शर्मा। जिले में बीते माह ग्रामीण सेवाओं, स्वास्थ्य, रोजगार, जल संरक्षण और कृषि से जुड़े कामों के साथ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। ग्रामीण सेवा शिविरों से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और राहत मिली। वहीं पांचना बांध के पानी बंटवारे से जुड़े लंबे विवाद का समाधान हुआ। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की। शिविर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में काम आगे बढ़ा। हर नागरिक के लिए आभा आईडी तैयार की जा रही है। जिले में अब तक करीब 13,70,000 आभा आईडी, 609 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और 1,719 हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री दर्ज की जा चुकी है। आभा आईडी से नागरिक अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला खाद्य और औषधि नियंत्रण कार्यालय में 6 नए स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का करौली के टाउन हॉल में सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश के 10,548 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें करौली के 175 युवा शामिल रहे। जल अर्पण दिवस के तहत जल जीवन मिशन की 17 गांवों की हर घर जल योजनाओं को ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को संचालन और संधारण के लिए सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीणों को जल योजनाओं के रखरखाव, जल स्रोतों के संरक्षण, जल गुणवत्ता और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर करीब 2 दशक से चला आ रहा विवाद सहमति से सुलझा। इसके बाद पांचना बांध की वितरिकाओं में करीब 2 दशक बाद पानी प्रवाहित किया गया। इससे किसानों को सिंचाई व्यवस्था को लेकर राहत मिली और पानी की उपलब्धता को लेकर उम्मीद बढ़ी। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में हुआ। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 34 प्रतिभाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हर घर तिरंगा अभियान की भी जिले भर में धूम रही। करौली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीजी कॉलेज से बस स्टैंड तक निकली यात्रा में 500 से अधिक युवाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। हिंडौन, टोड़ा भीम और सपोटरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी रैली, तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी आयोजित की गई। हाल ही में जिले में वीरांगना अवंती बाई लोधी का 196वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान उनके साहस, वीरता और देशभक्ति को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद किया गया, साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। स्लीपर और लग्जरी बसों तथा स्कूल बसों की जांच के दौरान 18 वाहनों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 15 वाहनों के चालान किए गए और 3 वाहन जब्त किए गए। श्रावण मास के चलते जिले का वातावरण पूरी तरह धार्मिक नजर आ रहा है। जिले के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहते हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रावणी तीज के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित श्री मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर 2340 करोड़ रुपए का खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त शुरू होवन वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां रा नेतावां री मीटिंग बुलाई। सदन चलावन में सकारात्मक भूमिका री अरज कीनी। राज्य में काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2000

0: अलर्ट जारी करी चियो और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान 15 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 2340 करोड़ रुपया खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा भया काम जनता ने सौंपया। जयपुर में राखी जिया कार्यक्रम में श्री शर्मा श्रम विभाग री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण वाला 1,32,000 रो बत्ता जना रा खाता में 154 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। इस दौरान श्री शर्मा 71 ई बसा ने वर्चुअल तरीका रवाना कीनी। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सुरक्षा सखियां और नौजवाना सा गई बातचीत कीनी। इस मौके वे कहो के सुशासन सारू कानून व्यवस्था मजबूत वेवनी जरूरी है।
1: आज का ये कार्यक्रम सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भावना ये सोच हमारी कार्यप्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में हर बीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
0: मुख्यमंत्री इनो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज उन्नति री समीक्षा बैठक लेनी। मीटिंग में वे अहलकारा ने जनता री परेशानियां माथे खास ध्यान देता थका वाने असरदार तरीका निपटावन रा हुक्म दीना। श्री शर्मा न्यारा न्यारा जिला में चल रहा कामा रो जायजो लेवन सागे राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल माथे शिकायत दर्ज करावन वाला सागे बातचीत कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री सदारत में आज जयपुर में सगली पार्टियां री मीटिंग रखी जी। 16वीं राजस्थान विधानसभा रा 20 अगस्त तो शुरू होवन वाला छठा सत्र पहली आज बुलाई जी ई मीटिंग में स्पीकर सगली पार्टियां रा नेताओं सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण में मदद री अर्ज कीनी। ई मौके श्री देवनानी कहो का सदन री कार्रवाई ठीक तरीके चलावण री सगला सदस्यों री भेली जिम्मेदारी है। श्री देवनानी चर्चा रे दौरान बोलन सारू सगला ने जरूरी टीम देवन रो भरोसो दिरायो। पक्ष और विपक्ष री ओर हुई स्पीकर ने जनता रा भला रा मुद्दा माथे सार्थक चर्चा करन रो भरोसो दिराई चियो। मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सदन में विपक्ष नेता टीकाराम जूली सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विपक्ष मुख्य सचेतक रफीक खान राष्ट्रीय लोकदल रा डॉक्टर सुभाष गर्ग बहुजन समाज पार्टी रा मनोज कुमार न्यांगली और भारत आदिवासी पार्टी रा थावर चंद ई मौजूद हा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा तहत फर्जी बीमा पॉलिसी बनावन वाला रा खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई शुरू करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल बतायो के खरीफ 2026 सारू टोंक जिला रा मालपुरा और जयपुर के नर शाहपुरा फर्जी फसल बीमा करावन रे सूचना जांच माई सही मिली। इन पाछे फर्जी तरीका बीमा करावन वाला रे खिलाफ FIR करावन रा हुक्म दिया चिया। श्री गोयल कहो के अड़ी पॉलिसियां करावन माई शामिल ई मित्र चलावन वाला दलाला और बीमा कर्मचारियों रे खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करी जावेला। राज्य सरकार 40 IAS और 53 RAS अहलकारा ना तबादला कर देना है। तबादलारी लिस्ट में राजस्थान विश्वविद्यालय रा रजिस्ट्रार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रा सचिव और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल रा सचिव समेत कई जिला रा अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक कलेक्टर शामिल है। सिखावन लेरिया IAS अहलकारा ने न्यारा न्यारा जिला में निर्वाचन अधिकारी रा दफ्तरों जोड़कर प्रशासनिक और चुनावी जिम्मेदारियां दिरीची है। नुआ लगाई जिया अहलकारा ने तुरंत कामकाज संभाल बारा हुक्म दिया जिया है। राजस्थान पुलिस की ओर उन लोगों ने सोशल मीडिया रो इस्तेमाल करते वक्त खास सावचाती राखण री अर्ज करीची है। जयपुर रा पुलिस मुख्यालय रा साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर में DSP सुधीर चौधरी निजता रो ध्यान रखता थका फेस ऑथेंटिकेशन रो सुबितो काम लेवन री राय दीनी।
2: लोग अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एट्स आदि यूज करते हैं और उसको प्राइवेसी का वो ध्यान नहीं रखते की वजह से

0: साइबर क्राइम फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखना चाहिए। आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऑप्शन आता है वो आपको रखना चाहिए। और जो साइबर फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है ओटीपी द्वारा। ओटीपी मांगने के भी कई तरीके होते हैं। लोग बैंक फ्रॉड के नाम पर, केवाईसी के नाम पर कोई लिंक भेजकर या कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया बोल करके ओटीपी आपसे मांगते हैं, और ओटीपी देने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। फिर आपको काफी लंबे समय के बाद इन चीजों का पता लगता है। और आप अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य में लारला 24 घंटा में दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही जिला में कठे कठे हल्की मझला दर्जारी बरसात हुई। मौसम विभाग काल अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर और धौलपुर समेत 10 जिला सारो बरसात रो येलो अलर्ट जारी किनो है। 20-23 अगस्त बीच भरतपुर और जयपुर संभाग में कटे कटे छुटपुट बारिश में बन रहा आसार है। निजीकानी जोधपुर और बीकानेर संभाग में आवता 2-4 दिन चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ जावन रे संभावना है। हालांकि शेखावाटी हल्का और आर सारे कटे कटे बिरखा फै सके है। हरियाणा और राजस्थान अभियान रा तहत बाड़मेर में आज वन महोत्सव राखी जियो। न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में राखी जाए कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई हरियाली बधावन सारू जनतारी भागीदारी मथ जोर तीनो। जैसलमेर रा राजकीय नर्सिंग कॉलेज में आई पौधा रोपण रो कार्यक्रम थियो जिनमें विद्यार्थी भांत भांत रा पौधा लगाया। देश में हाल ताई 2 करोड़ बत्ता बच्चा रा बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया गया है। लारला साल सितंबर महीना चलाई गया खास अभियान रा तहत 1.5 लाख बत्ती स्कूल में बच्चा रा आधार बायोमेट्रिक अपडेट रो सुबितो दियो चियो। ध्यान जोग है कि 5 साल कम उम्र रा बच्चा रा आधार में केवल नाम, पता और फोटो दर्ज करया जावे है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान कर दियो चियो है। इन तहत न्यारा न्यारा खेलना रा 15 खिलाड़िया ने चोखा खेल रो दर्शाव करण सारू अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा चावेला। आम आय महिला बैडमिंटन डबल्स री खास जोड़ी ट्रिसा चौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद शामिल है। भारत माय फुटबॉल रा बेहतरीन खिलाड़ी ईसाया अरुमेनाया गमन रो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम देर मान करियो चावेला। ईसागे एथलेटिक्स रा कोच परवीर सिंह, मुक्केबाजी रा कोच छोटेलाल यादव और निशानेबाजी रा कोच नेहा नंद कुमार चौहान ने द्रोणाचार्य पुरस्कार दियो चावेला। पुणेरी आर्मी पैरालंपिक नोड ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सारू चुनचियो है। नई दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप रा एकल मुकाबला में आज भारत रा लक्ष्य सेन रो मुकाबलो ऑस्ट्रिया रा कॉलिन्स वेलेंटाइन फिलिमोन भेरियो है। इनु पहली महिला एकल मुकाबला में भारत री उन्नति हुडा म्यांमार री थेट्टार ने 22-20, 21-16 शिकस्त दीनी। महिला डबल्स रा एक मुकाबला में भारत री सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम री जोड़ी बुल्गारिया री स्टेफनी स्टोवा और ग्रेबियरला स्टोवा री जोड़ी 21-7, 21-14 हार गई। आज ही व्या महिला डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री ट्रिसा चौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद री जोड़ी अमरीका री लॉरेन लेम और एलिसन ली री जोड़ी ने 21-15, 21-12 शिकस्त दीनी। मिक्स्ड डबल्स में भारत रा असित सूर्या और अमृता प्रमुथेश री जोड़ी ने तुर्की री जास्मीन बेगताज और एमरे सोमेंस री जोड़ियों 21-16, 29-30 और 22-24 हार रोसा मोकन पड़ियो। मिक्स्ड डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री रुत्विका गड्डे और रोहन कपूर री जोड़ी ने कनाडा रा जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई री जोड़ियों 20-22, 21-19 और 21-17 शिकस्त मिली। दूजिकानी श्रीलंका रा कोलंबो में भारत और श्रीलंका बीच चल रहा क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पकड़ मजबूत कर लेनी है। श्रीलंका ने मैच जीतन सारू काल आखिरी दिन 288 रन और बनावना फैला जबकि हमारा 4 बल्लेबाज 84 रन बनार आउट फेंकया है। आज मैच रा चौथा दिन भारत री टीम दूजी पारी में 193 रन बनार आउट फेंकी जिन पाछे श्रीलंका ने मैच जीतन सारू 372 रन बनावन रो लक्ष्य मिलियो। भारत पहली पारी में 462 रन बनाया है। प्रदेश में ई मित्र व्हाट्सएप माथे मुहैया कराई जा रही सरकारी सेवा वाली तादाद 51 बधार 103 करती रिची है। सूचना प्रौद्योगिकी

0: संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता बतायो कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए हाल ताई 232,092 लोग सरकारी सेवा मारो फायदो घर बैठे ही ले चुका है। इन सारो व्हाट्सएप नंबर 9461062705 माथे संपर्क करियो जा सके है। नंबर ओजो सुन ले रहा हूं सा 9461062705। ब्रिक्स देशाना पर्यावरण मंत्रियों नो सम्मेलन आज नई दिल्ली में रखी चियो। सम्मेलन रे सदारत करता था केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। इंसानियत रो खास ध्यान रखता था लगातार विकास सारो नीति प्रौद्योगिकी और जनतारी भागीदारी रो तालमेल बिठावन माथे जोर दिनो। श्री यादव ब्रिक्स सदस्य देशों रा नुमाइंदा दलाना मुखिया सागे ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर बनाई जा चार ज्ञान संकल्पों रो अनावरण किनो। आमाए ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर करी जा रचनात्मक विचार विमर्श नई शामिल करी चियो है। श्री यादव बतायो कि साल 2005-2022 रे दौरान भारत माए प्रदूषण माए 37% बत्ती कमी आई। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर 2,340 करोड़ रुपए रा खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त को शुरू होने वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां ना नेताओं री मीटिंग बुलाई। सदन चलावन में सकारात्मक भूमिका री अर्ज कीनी। राज्य में काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान 15 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.2 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 7 बजे आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: कोई डर नहीं।
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगड़ा श्रोताओं ने आशाधाबाई का घना घना राम राम, और महेश भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: राम राम आशा जी आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान वाणी, बाने भी घनी मोकली राम राम। और आशा जी कहीं हाल चाल बढ़िया?
6: हाल चाल बढ़िया है सा। और देखो आज बात करें ना किसान वाणी कार्यक्रम में, और बात किसाना से जुड़ी ही हुए तो और भी बहुत बढ़िया। तो देखो सा, बरसात को मौसम चल रहे छे, और ई मौसम के मायने थोड़ी सी अगर सावचेती अपना काश्तकार भाई किसान भाई बरत लेवे तो मोटो मोटो फायदो आने हो जावे छे। क्योंकि बरसात को मौसम छे, ई मौसम में इंदर राजा कद मेहरबान हो जावे, कद रूस जावे, यो तो आपने पतो कोने, पर हाँ सावचेती राखबो आप।

0: काम छे ताकि आप अपनी फसल ने सुरक्षित रख सका और वासियों चोखो उत्पादन ले सका। अब मान लो एकदम सु बरसात बरस रही चाहे दो चार दिन तानी लगातार, तो सावचेती यही रखनी चाहे कि आपा अपने खेत में जल निकास की जो व्यवस्था चाहे उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखा कि आपने खेत में पानी को जमाव या भराव न होवे, क्योंकि सीधो सीधो फसला ने प्रभावित कर लो। दूसरी मोटी बात यह भी ध्यान रखो सा कि ई टाइम ही आपकी फसला की बढ़वार हो रही है, तो आपके फसलों की बढ़वार के साथ साथ ही उनको सुरक्षा को भी पूरो ध्यान रखो ला। ई ताई मेड़बंदी अच्छी तरह से करो, साथ ही साथ हो सके तो तारबंदी कर लो ताकि सुरक्षित उत्पादन आपका घर तक पहुंच सके। और महेश भाई एक बात को और ध्यान देनो है, वो या कि ई मौसम के मायने खरपतवार भी तेजी से बढ़े छे और पशुआ जो अपनी फसला छे वहां का जो पोषक तत्व छे वाना अवशोषित कर लेवे छे, तो बढ़वार कम हुए छे, गुणवत्ता में फर्क पड़े छे। ई ताई खरपतवार नियंत्रण भी घणो घणो जरूरी छे।
1: खरपतवार ने भी निकालनी है। और जी आवारा बताया कि भी खेत कमाए पानी को जमा हो गया है, पानी ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, फसल गड़बड़ने लग जाए तो भी पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी तेजी से बह के आ रहे हैं, तेज बारिश कमाए तो आसान न हो कि भी खेत की माटी भी पानी के साथ में बह के बाहर चले जावे, तो खेत की थोड़ी सी पक्की मेड़बंदी किसान भाई करा ली और साथ में देखो फसल जब थोड़ी बड़ी होने लग जाए तो जैसा आवारा पशु ही बस फसल में खतरे हुए, तो खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी और मेड़बंदी जरूरी है। तो किसान भाई ई को भी ध्यान रखे। और अब देखो आपने ये कार्यक्रम कमाए, देखो जो जानकारी है खास वह है फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरकों को महत्व, जानकारी देसी डॉक्टर कमलेश शर्मा और आपसे जानकारी ले रही है अनिता बहन, तो दिरावा किसान भाई ने जानकारी।
0: बिल्कुल सा किसान वाणी सुनवाड़ा सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा। श्रोतावा किसान वाणी में हमेशा ही मैं आपके लिए नई नई जानकारियां ले रहा छा, यही आज की जानकारी ले रहा छा आपके लिए फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक का महत्व का बारा में। ई विषय पर जानकारी देबा के लिए आज अपना स्टूडियो में पधारा छे डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में आप विराजे छे। डॉक्टर कमलेश शर्मा जी आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानवो चाहला जी आप फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक को काही महत्व छे?
2: देखिए किसान भाइयों, फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरकों का बहुत बड़ा महत्व है
0: जी।
2: सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो हमारे पोषक तत्व फसलों को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ सूक्ष्म तत्व भी जैसे जिंक, आयरन, बोरोन, ये सभी हम जल विलय उर्वरकों के माध्यम से फसलों को पहुंचा देते हैं और फसलें उन पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेती है। दूसरा महत्व यह है कि इन उर्वरकों के द्वारा पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ती है, यानी कि वो पोषक तत्व जो है जितना हम जल विलय उर्वरकों में डाल के देते हैं उसमें से अच्छी मात्रा में पौधे उनका अवशोषण कर सकते हैं। इसके बाद में फर्टिगेशन का उपयोग करके हम जो है इन जल विलय उर्वरकों को फसलों को देते हैं। फर्टिगेशन का अर्थ है कि सिंचाई के जल के साथ में इन जल विलय उर्वरकों को मिला करके और फसलों को देते हैं, उससे वो आसानी से फसलें उनको ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में इन जल विलय उर्वरकों का ये भी महत्व है कि ये फसल की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि समय समय पर हम सिंचाई करते हैं और समय समय पर सिंचाई के साथ साथ ही हम जब इनको मिला के देते हैं तो वो उर्वरकों की आवश्यकता, उन पोषक तत्वों की आवश्यकता फसलों को पूर्ति होती रहती है। इस वजह से उसके उत्पादन में वृद्धि होती है और उस पौधों की बढ़वार भी होती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मृदा में पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण होता है, क्योंकि जैसे हम ऐसे छिड़काव करके पेड़ डालते हैं तो वो कहीं कम गिर जाता है और कहीं ज्यादा गिर जाता है, लेकिन जब हम जल विलय पानी में मिलाकर के उस यूरिया को डालते हैं तो वो आसानी से पूरे एक समान रूप से फसलों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं
0: जी।
2: तो यह भी इसका बहुत महत्व है। फिर महत्व है कि हमारे समय की बचत होती है, और लेबर की बचत होती है।

0: इस प्रकार इसके आगे के इसका महत्व की बात करें, ये जो सब्जियां हैं, फल है, फूल है, बागवानी की फसलें हैं, इन सभी में जल विलेय उर्वरकों को आसानी से उनके जब आवश्यकता हो
1: जी
0: तब हम उनको पूर्ति कर सकते हैं। और क्योंकि फसल का समय लंबा होता है तो उसमें बीच बीच में पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक होता है, तो सिंचाई के साथ में इन जल विलेय उर्वरकों को हम आसानी से दे सकते हैं।
1: जी सर, आप बात कर रहे हैं भाई जल विलेय उर्वरक का महत्व का बारे में, पर सर अब यह बताओ भाई जल विलेय उर्वरक का प्रयोग अगर आपने किसान भाई कर रहा है तो वाने इको काई लाभ होलो?
0: देखिए, जल विलेय उर्वरकों को अगर किसान साथी कर रहे हैं तो लाभ उनको ये होता है कि एक तो पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती है
1: जी,
0: दूसरा किसान का समय बचता है और किसान की लेबर बचती है, क्योंकि किसान को इन जल विलेय उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ ही देना होता है, इस वजह से उसको लेबर भी बच गई, उसका समय बच गया और जो है उसके पास में जो पोषक तत्वों का जो नुकसान होता था पहले, वो पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होगा और संतुलित मात्रा में वो पोषक तत्व उस फसल को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत लाभ मिलता है किसानों को और जल विलेय उर्वरकों के यूज से जो है फसल में बढ़वार भी अच्छी होती है।
1: तो सर जी आप ही बात कर रहे हैं जल विलेय उर्वरक का बारे में, और अब बात कराला जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर कहीं हो चाहे या अपना किसान भाइयों ने बताओ सर।
0: देखो किसान भाइयों, जैव उर्वरक या इसका इंग्लिश में नाम है बायो फर्टिलाइजर
1: जी,
0: तो जैसा कि नाम ही बता रहा है जैव उर्वरक यानी इसमें कुछ जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, इस प्रकार के जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इनका भी बहुत महत्व है, इसमें बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें से मैं आपके सामने कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, फास्फेट घुलनशील जीवाणु है और माइकोराइजा है। ये कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये भी ये फसलों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: अब मैं जैसे आपके बात कहूँ राइजोबियम की, यह एक जैव उर्वरक है। यह राइजोबियम है जो दलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये दलहनी फसलों में प्रयोग करने से मिट्टी में ये नाइट्रोजन की मात्रा को जमा करते हैं और फिर वो नाइट्रोजन पौधे द्वारा अवशोषण कर ली जाती है
1: जी।
0: उसी प्रकार से एजोटोबैक्टर है, ये अनाज वाली फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है और ये भी जो है नाइट्रोजन को फसलों को देते हैं। तो इस प्रकार से बायो फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज जब हम संतुलित उर्वरक देने की बात करते हैं तो उसमें बायो फर्टिलाइजर भी एक मुख्य अंश है। इस प्रकार से हमको अब बायो फर्टिलाइजर्स का यूज धीरे धीरे ज्यादा करना चाहिए।
1: तो जी की आप बात कर रहे हैं भाई जैव उर्वरक कहीं हो जाए, आप बहुत सारा जैव उर्वरक की बात भी करी, तो ये फसल में की तरीका से मदद करे जाए बढ़वार में?
0: देखिए किसान साथियों, जैसा कि अभी अनिता मैडम ने पूछा कि ये जैव उर्वरक किस प्रकार से फसल उत्पादन में मदद करते हैं, तो अब देखो जब वायुमंडल की नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में है, उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये पहले मिट्टी में जमा करते हैं और मिट्टी में जमा करके फिर ये पौधे की जड़ों द्वारा उस नाइट्रोजन को पौधे शोषण कर लेते हैं
1: जी।
0: तो इस प्रकार से ये तो एक एग्जाम्पल है आपके एजोटोबैक्टर का, उसी प्रकार जो मैंने बताया आपके राइजोबियम, ये जीवाणु खाद है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर है। ये राइजोबियम क्या करता है कि जो दलहनी फसलें होती है उन दलहनी फसलों में वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण करके और पौधे की जड़ों में ये फिक्स कर देते हैं और फिर पौधे उसको अवशोषण कर लेते हैं और उससे पौधों की लगभग इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज करने से 20-25% पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार इसका सभी फसलों में, ये दलहनी फसलें हो चाहे अनाज वाली फसलें हो चाहे दूसरी फसलें हो, उनमें सब में ही बायो फर्टिलाइजर का या जैव उर्वरकों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी। तो सर

0: आपा जैव उर्वरक की बात कर रहा था तो कहीं रासायनिक उर्वरक को पूरा विकल्प छे जैव उर्वरक यो मान सके छे अपना किसान भाई?
1: नहीं मैडम, रासायनिक उर्वरकों का विकल्प नहीं है
0: जी।
1: रासायनिक उर्वरकों का ये विकल्प नहीं है क्योंकि रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है या दूसरे सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो उसमें फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, वो अलग तत्व देते हैं फसलों को। लेकिन जो जैव उर्वरक है वो तो उसमें जो जीव है वो तो हमारे पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके और जमीन में फिक्स करते हैं और फिर उसके माध्यम से पौधे की जड़ों द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जरूर बात है कि जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ मिला करके भी दे सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे जैव उर्वरकों में हम पहले तो मुख्य रूप से ये होता है कि बीज का सीड ट्रीटमेंट करके भी उसको दे सकते हैं, है ना, जिसमें राइजोबियम भी है। ये जो बायोफर्टिलाइजर है वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। अगर हम उसको देना चाहते हैं तो बायोफर्टिलाइजर को सीड ट्रीटमेंट करके और फिर हम देते हैं, और अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं करना है और आपको वैसे ही डालना है मिट्टी में, मृदा में, तो 5-6 किलोग्राम जो बायोफर्टिलाइजर है प्रति हेक्टर के हिसाब से वो भी हम उसमें जमीन में डाल करके भी और बायोफर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इसका मतलब यह हुआ कि बायोफर्टिलाइजर और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर है वो दोनों ही दे सकते हैं, उनका विकल्प नहीं है।
0: तो सर जी अपना किसान भाई जैव उर्वरक ने काम में ले रहा है तो कहीं याने काम में लेती टाइम भी किसी बातों को ध्यान रखनी चाहिए?
1: देखिए, जैव उर्वरकों को काम में लेने के टाइम पर बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पहली बात यह है कि इन जैव उर्वरकों को हमको धूप में अत्यधिक गर्मी से बचा के रखना चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैव उर्वरकों में जीव होता है, तो इनको जिस प्रकार जीव का एक सामान्य तापमान में इनको रखा जाता है, बहुत अगर इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रखेंगे तो उसमें आदि जीव नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको छाया में रखा जाता है और छाया में रख करके सामान्य तापमान पर रखें, और इसको जो है एक यूज करने का तरीका है कि किस प्रकार से इनको मिला करके और फिर फसलों के जो हमारे बीज होते हैं उन बीज के ऊपर इनको सीड ट्रीटमेंट करके ही किया जाता है, और अगर मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में भी इनको डाला जाता है, तो इनके डालने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अब आज के समय में तो जैव उर्वरकों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है क्योंकि हमारी जो मिट्टियां है, हमारी मृदा है जिसको हम धरती माता बोलते हैं, वो धरती माता का इतना दुरुपयोग हो गया है, इतना अवशोषण हो गया है या इतने रासायनिक तत्व डाल दिए गए हैं कि वो जमीनें ही अब धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है
0: जी।
1: और उसमें जैव मात्र चीज बहुत कम रह गई है, तो इस बंजरता से बचाने के लिए हमारे को अब मिट्टी में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी मिट्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी
0: जी।
1: इसको बचाने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा जैव उर्वरकों का हमारे को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
0: श्रोताओं, किसानवाणी में आज अपने जानकारी देवा के लिए डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय जोबनेर से पधारा छे और आपने जानकारी दे रहे छे फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक का महत्व के बारे में। और अभी आप यहाँ से बहुत सारी चीजा जाने भाई कि जल विलय उर्वरक को उपयोग कर सका छा और जैव उर्वरक को फसल उत्पादन में कत्तो महत्व छे। तो डॉक्टर कमलेश शर्मा आपसे आगे या जानवो चाहना भाई किसाना ने जैव उर्वरक को उपयोग करते टाइम जो अभी आप बाता जाना कि भाई कैसी कैसी बातों को ध्यान रखने चाहिए, पर आगे या जानवो चाहना भाई जल विलय और जैव उर्वरक ने अपना पास है खेती में अपना किसान भाई ने कितो लाभ हो सके छे?
1: देखिए किसान साथियों, अभी मैडम ने पूछा है कि जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरकों को अपनाने से खेती में कितना लाभ हो सकता है। तो ये जो लाभ की बात है ये दोनों ही बहुत लाभ देते हैं, चाहे जल विलय उर्वरक हो और जैव उर्वरक हो
0: जी।
1: तो इनसे सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि अच्छा आपके उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ती है, फसल की अच्छी वृद्धि होती है
0: जी,
1: बेहतर उत्पादन होता है, और साथ साथ में जो हमारी धरती माता है उसमें भी उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है
0: जी।
1: क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है।

0: कि वर्षों से हम देखते आ रहे हैं किसान साथियों कि हम सब या तो यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं और इस वजह से वो जो रासायनिक तत्व है वो उस मिट्टी में चला जाता है। हर साल हर वर्ष हर सीजन में किसान डालता है इस प्रकार के रासायनिक तत्व रासायनिक उर्वरक, उससे मृदा की जैविक क्षमता बहुत कम हो गई है। तो उसको बनाए रखने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अब हम जल विलेय उर्वरकों का प्रयोग करें और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमने टेस्ट किया है कि जैसे पंजाब की मृदाओं के बारे में हमने जांचा देखा कि पंजाब की मृदाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक तत्व पाए गए हैं जो कि बहुत नुकसानदायक हैं और बहुत नुकसानदायक के साथ साथ में वो रासायनिक तत्व जो है हमारी फसलों के द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं और उस अवशोषण से वो केमिकल ज्यादा आने की वजह से वो फसलें भी फसलों की जो अनाज उत्पादन होता है या फल उत्पादन होता है या सब्जियां उत्पादन होती है उनमें भी वो रासायनिक तत्व ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। उसकी वजह से इस प्रकार के ज्यादा रासायनिक तत्वों के अनाजों को सब्जियों को फलों को उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मानव स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और सभी हमारी धरती को अच्छा करने के लिए हमारे वायुमंडल को अच्छा करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम सभी किसान भाई मिलकर के बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हर फसल में हर सीजन में करें ताकि हमारी धरती की उर्वरता क्षमता बढ़े और फसलों का उत्पादन भी बढ़े।
1: जी श्रोतावा किसानवाड़ी में जानकारी देवा के लिए आज अपने साथ छा डॉक्टर कमलेश शर्मा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर से आप पधारा कार्यक्रम में समय निकाल रहा आया और इतनी बेहतर तरीका से जैव उर्वरक और जल विलय उर्वरक का बारे में किसान भाइयों ने बताया। इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद। राम राम सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: चला बोल रहा
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
3: सच है।
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो आशा जी
6: जी
5: भाई फसल उत्पादन का माय जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक को महत्व ये विषय पर बहुत चुकी जानकारी दी डॉक्टर कमलेश शर्मा प्रोफेसर मृदा विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आया और किसान भाई ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी और अनिता भाई ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी किसान भाई के वास्ते आंसर दी रही। तो चौकी सी जानकारी के बाद अब क्यों ना अपना जगह किसान भाई ही बने एक चौकसो लोग गीत सुना दे
6: बिल्कुल सा तो आओ सा सगला ही मिलर सुनायो गीत।

0: गीत तो बहुत ही चौकस होना है ऐसा।
1: संतोष पारी की आवाज में चौकस हो, लोकगीत हो मोरिया, और बिल्कुल मोरिया बोलगा साहब। अब देखो आपा किसान बहन है, कुछ मंडी का भाव बता दे जावा से पहले, है ना। तो बस्सी की जो मंडी है उसका माए सरसों को अधिकतम भाव रहे हो 8,050 रुपया, बस्सी की मंडी में ही तारा मीरा को अधिकतम भाव रहे हो 5,700 रुपया। जयपुर की फल सब्जी मंडी की बात करा तो हरी मिर्च का अधिकतम भाव रहा 4,000 रुपया। टोंक की मंडी की बात करा तो टोंक की मंडी में जीरे का अधिकतम भाव रहा 16,000 रुपया प्रति क्विंटल। टोंक की मंडी में सौंफ का अधिकतम भाव रहा 8,500 रुपया। टोंक की मंडी में सरसों का अधिकतम भाव रहा 8,250 रुपया प्रति क्विंटल। और कोटा की जो मंडी है इकमाए लहसुन को अधिकतम भाव रहो 15,000 रुपया प्रति क्विंटल। और मौसम की बात करा तो पासला 24 घंटा का माए जयपुर को न्यूनतम तापमान रहो 27 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस। अगले 24 घंटा का माए जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा की। और प्रदेश के माए कटे कटे में छाट हो सके है, कटे बादल रह सके, यह है मौसम की संभावना। बरसात को मौसम है तो भी देखो मैं कोई भी टाइम बरस का है।
0: बिल्कुल, तो सावचेती राखनी बहुत जरूरी छे। और जिया की आपने मंडी भाव बताया तो मंडी का भाव ने ध्यान में रखता हुए ही आपकी फसल की खरीदान और बेचान भी आपने करनी चाहिए ताकि आपने आपकी मेहनत को पूरा पूरा फायदो मिल सके। और बरसात का मौसम में जो सावधानियां रखनी चाहिए काश्तकार भाया, चाहे वे अपने खेती बाड़ी के लिए हो या और कोई चीज के लिए, तो वो आपने जरूर से जरूर रखनी चाहिए। और कार्यक्रम में जरा आप बात करना चाहे कि मौसम की और खेती के जो ये आदान चिया की या ई तय करा चाह ताकि आप न आपकी मेहनत को पूरा फायदो मिल सके। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारों कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चाहे किसान वाणी
1: बिल्कुल
0: को टेम पूरा हो।

0: हो जा रहे जे तो श्रोतावा निराव आज्ञा आशा ने
1: और मेजबानी ने दियो आज्ञा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है, एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: खेती बाड़ी सुनबड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम, और आशा जी आपने भी राम राम।
4: महेश भाई आपने भी खूब खूब राम राम, और खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनबड़ा सगड़ा किसान बहन भाई ने भी आशा का घना घना राम राम सा।
3: बिल्कुल आशा जी, जगह अपना किसान भाई ही
4: जी।
3: मैं देखो जब कोई फसल हुए तो खेत में देखो किसान भाई का काम चलता ही रहे।
4: बिल्कुल सा।
3: और फसल हुआ तो भी कमाई कई प्रकार का जगह ही कीट रोग लग जाए।
4: बिल्कुल।
3: और फसलों के माध्यम जब कीट रोग को प्रकोप हो, बीमारी का प्रकोप हो, तो कीटनाशी जो रसायनी स्प्रे हिमा को छिड़काव भी करना पड़े।
4: लेकिन ध्यान दांगबा की बात यही छे कि आप फसल की सुरक्षा

0: लिए जो भी कीटनाशी रसायन को छिड़काव या भुरकाव करो तो वो जद ही करो, जद जरूरत हो गए जरूरत के मुजब करो। और दूसरी बात कि हमेशा कीटनाशी रसायन को सुरक्षित छिड़काव और भुरकाव करा। अब आप देख ही रहे महेश भाई की बरसात को मौसम छे और ई बरसात का मौसम में खरपतवार भी ज्यादा हो गए छे, साथ ही साथ कीड़ा बीमारी भी फसल में ज्यादा लगे छे। कई बार आप देखे होला खेत में काश्त करवाया जावे छे, आपा भी कदे कदे चालां छा बारे वो भी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपा देखा ही छा खेता के मायने की फसल उगेड़ी छे, पत्तियां के मायने छेद हो रहे छे। आप देखो जो हरी सब्जी भी बार आपा कई बार पालक में रे लेवा तो आप देखो जो कि कई प्रकार का धब्बा ये दिखे छे, तो ये सब एक प्रकार का रोग और बीमारी छे जो कि हर फसल में अलग अलग तरह की होवे छे। इके तई अलग अलग तरह से रोकथाम भी करनी हुए छे। टाइम टाइम पर आपा बताता भी रहा छा काश्तकार भाई इतना लंबा समय से कृषि कर रहे छे वाने भी ज्ञान हो गई छे, पर बस यही छे कि हाँ सुरक्षित छिड़काव और भुड़काव करेला आप तो दोनों तरह की सुरक्षा छे। फसल की सुरक्षा तो हो गई भी हो गई, साथ ही साथ आपा मानव स्वास्थ्य में भी सुरक्षित रख सका छा, क्योंकि अंधाधुन छिड़काव भुड़काव कर उत्पादन में अगर बेचान के लिए ले जावा छा और फिर आपा उन्हें काम में लेवा छा तो सीधो अपना स्वास्थ्य ने प्रभावित करे छे और पीसो तो आपको बची रहे छे।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो जो कीटनाशी रसायन ही वहां का छिड़काव में ये है कि भाई किसान में जो भी फसल का में कोई कीट लगे है जो रोग लगे पहले तो भी की पहचान करें
0: बिल्कुल
1: कौन सा है, और फिर जगह अपना कृषि विशेषज्ञ माने दिखा के और वहां की जो सिफारिश है बी के अनुसार जो फसल है बी कमाए बी रोग को जाप्त करें। भाई कोई आपने भी रसायन बताया तो भाई दवाई बाजार से खरीद के लेके आओ है, दुकानदार को पहले भी कोई बिल ले लें
0: बिल्कुल,
1: और दवाई का डब्बा ने जो रसायन का डब्बा है भी ने पढ़ के कि भी इन्हें अतरी मात्रा का माए मिला के और ई प्रकार से छिड़काव करना है तो भी अनुशंसा का आधार पर ही छिड़काव करना चाहिए।
0: और महेश भाई बरसात का मौसम में एक ध्यान रखने की बात यह भी चाहिए कि मौसम की जानकारी ने ध्यान में रखता हुए ही छिड़काव भुड़काव करना चाहिए। मान लो लगातार दो चार दिन से बरसात हो रही है, आगे भी मौसम विभाग की सूचना चाहिए कि बरसात हो सके छे और वही टाइम अगर आप लाग जाओ छिड़काव भुड़काव करवा तो वो दोहरो नुकसान हो जावे छे, आपकी मेहनत भी फालतू जावे छे, पीसो जो लगा रहे छो खरीदबा में वो भी फालतू जावे छे, और सबसे बड़ो नुकसान तो यह होवे छे कि जी चीज की सुरक्षा के लिए यो काम कर रहे ना तो वह सुरक्षा मिले बाकी नुकसान और हो जाए।
1: बिल्कुल, चाहे देखो अपनी बाड़ी का माए सब्जी लागेड़ी हुए सब्जियां का माए भी बहुत सा रोग लग जाए, चाहे अपनी जो है फसल हो है कोई कमाए भी जो कीट रोग या व्याधि हो है तो बिल्कुल समय रहता उपचार करना जरूरी हुआ है, क्योंकि समय रहता आपा रोग की या कीट की पहचान कर लेवा और बिल्कुल फिर उपचार करा कोई भी प्रकार से तो फिर जो है फसल खराब होगा से बच जाए है और कीट रोग पर अपार नियंत्रण भी पास का तो फसल को निरीक्षण करता रहे किसान भाई समय पर भी की पहचान करके और जगह विशेषज्ञ माने दिखा के बुला के और फिर भी को उपाय करा।
0: और अब आर महेश भाई देखो जे की बाजरा मूंग मोट ग्वार कपास इकी फसल अच्छे खेता में तो उक मायने भी ई टाइम पी जो कीड़ा बीमारी लाग रही छे तो काश्तकार भाई हमें तो देखो ध्यान रखे छे, फिर भी विशेषज्ञ के सलाह के बाद ही आपने छिड़काव या भुड़काव करनी छे।
1: ठीक है, तो अब और कहीं करना छे अपन
0: और तो देखो विषय विशेषज्ञ आवे छे कार्यक्रम में जानकारी दे बताई तो वह जानकारी भी पुजानी छे, साथ ही साथ मनोरंजन ने भी पूरो पूरो आपाने महत्व देनो छे और काश्तकार भाइयों को मनोरंजन भी करनो छे।
1: तो एक लोकगीत आपा सुना जा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: आशा जी,
4: जी
3: भाई, उड़ रहे मारा काला कागला, परवीन मिर्जा की आवाज में लोगी तो आप बहुत चौको सुनियो।
4: और देखो कालो कागलो उड़ो और साथ में अपना विषय विशेषज्ञ जने वाने बुला ले आयो।
3: बिल्कुल, तो काई जानकारी आज
4: कृषि विकास में कृषि यंत्र की भूमिका राजेंद्र कुमार शर्मा जानकारी दे रहे थे और यहाँ सु बात कर रहे थे अपना दौलत भाई।
3: तो दिनावा जानकारी
4: बिल्कुल सा
5: स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उप निदेशक है कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर पधारिया है और आप यहाँ सु बातचीत कर रहा कृषि विकास में कृषि यंत्रा को योगदान। सबसे पहले कृषि सु संबंधित काम जो चीजा है यंत्रा सु बहुत आसान होगी है और बात करा अगर कृषि यंत्रा की तो सबसे पहले आप कहीं कहनी चाहो कि आधुनिक खेती के मायने परंपरागत खेती जो आप करता आया और आज जो यंत्र उपलब्ध है बाजार में कितनी आसान और कितनो योगदान।
6: सबसे पहले तो किसान भाइयों, मैं आप सबसे राम राम करता हूँ। पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो अपने बैलों से, बैलों की जोड़ी से अपने जो खेती होती थी और आज वो सारी परिप्रेक्ष्य, आज के परिवर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब चीजें बिल्कुल ही बदल चुकी है। आज किसान भाई सभी जो है, जो भी खेती के काम है, जो भी हमारी

0: क्रियाएं होती हैं, जुताई है, बुआई है, जो भी अपनी संक्रिया सारी निश्चित समय पर करनी होती है। और इसके लिए हमें आजकल गांव में जैसे देखा जाता है कि अपने मजदूर नहीं मिल पाते खेती और मजदूर, तो कृषि यंत्रों को इसलिए काम में लेकर के अपने जो भी काम है किसान भाई आप लोग जो है समय पर पूरा कर सकते हैं। और बिना कृषि यंत्रों के आज खेती की परिकल्पना मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती है।
1: बिल्कुल, बिना यंत्रों खेती की परिकल्पना को नहीं कर सके। लेकिन एक दौर हो जो कि आप ही बता रहे हो, बैल सू और पशुओं से अपना हल जोतता और एक पूरी प्रक्रिया ही, चाहे वह खाद बीज की बात हो, चाहे कटाई की बात हो, चाहे निराई गुड़ाई की बात हो या लाटो काटवा की बात हो, सब चीजें लोग हाथों करता। लेकिन यंत्र की चीजें आई तो बहुत आसान होगा और समय की जो है वो अभावी बहुत बड़ी बचत होगी, लेकिन लागत है वो ज्यादा बढ़गी। अड्डा एक सवाल वो जानबो चाहूँ की खेती में सभी काम है निश्चित समय पर कराया जावे, कौन कौन सा काम आसान हुआ है यंत्र की वजह से?
0: देखिये, सबसे पहले तो मैं बताऊँ की खेती संबंधित सभी कामों को निश्चित समय पर किया जाता है तो ही अपनी खेती जो एक मुनाफे का सौदा हो सकती है, नहीं तो किसान भाई आपको नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे मैं बताऊं, जैसे आप वर्षा आधारित जो खेती करने वाले हमारे किसान भाई है, बारिश शुरू होने से पहले वो खेत की जुताई करके अपने खेत को तैयार रखते हैं, बारिश होते ही बुआई का काम शुरू करना होता है, खरपतवार को समय पर हटाना होता है, फसल पर समय पर आवश्यकता अनुसार जो भी आपको मान लियो कीड़े वगैरह कीटे पतंगे कुछ भी लग गया हो, कोई रोग लग गया हो, तो ऐसे में कीटनाशक आदि का भी स्प्रे अपने करना होता है। फसल के पकने पर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कभी मौसम खराब हो सकता है तो हमें तुरंत फसल कटाई की व्यवस्था भी करनी होती है। फसल कटाई के बाद में फसल घाई का काम किया जाता है जिसमें फसल से दानों को अलग किया जाता है, फिर दानों को साफ और फिर उसकी ग्रेडिंग का काम किया जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे किसान भाई अपनी फसल को बाजार में बेचने के लायक बना पाते हैं।
1: यंत्र की बात कर लें एक बार, कौन कौन सा यंत्र शुरुआत सु अगर बात करा के किसान बीजाई सु पहली भी कई चीजें हैं, जैसे कि बीजोपचार की बात करना, यो भी एक यंत्र आजकल आ गया, पंचायत में रखेड़ा रहेगा बिरू बीजोपचार भी हो जाए। कौन कौन सा यंत्र शुरुआती तौर पे किसान काम में लेवे है और की तरीका सुबह को काम आसान हुई?
0: सबसे पहले बीजोपचार की बात आती है, जो पंचायतों में अपने जो एक सीड टिटिंग ड्रम अपना रखा हुआ है सभी जगह करीब करीब, उसमें अपने जो भी बीज हम ले रहे हैं उसको उसमें अपने जो निश्चित मात्रा में अपने जो केमिकल्स वगैरह जो भी हम बताते हैं, जो भी रिकमेंडेड है हर फसल के लिए, हर बीज के लिए अलग अलग, उनको डाल के उसमें मिला करके उसके बाद में फिर उसकी बुआई की जाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे सारे जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, संक्रियाओं के लिए, उसमें से जुताई के लिए जैसे जो मुख्यतः हमारे जो चल रहे हैं उसमें एमबी प्लाउ है, डिस्क प्लाउ है, रोटावेटर है, बुआई के लिए जो है सीड ड्रिल है, सीड क्रम फर्टिलाइजर ड्रिल है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, कटाई के लिए रीपर है, गहाई के लिए थ्रेशर और सीड क्लीनर ग्रेडर, ये सारे जो यंत्र हैं ये किसान भाइयों के लिए सारे कार्यों को बिना मजदूरों पर निर्भर रहते हुए अपनी खेती का काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं और इनसे अपना काम अपना समय पे करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन इतना यंत्र एक किसान के लिए तो खरीद वो तो आसान को ना, माना कि काम है बहुत आसान हुई है तो कई किसान आंको उपयोग किराया पे लेके करे, कई किसान सामूहिक तौर पे खरीद कर सके, कई सरकार की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी है कि जगह जगह आप बिना काम में ले सको, क्योंकि खेती आसान यंत्रासु तो होगी लेकिन जब यंत्र की खरीदवा की और खेती में काम लेवा की बात करा, जब उत्पादन की आप लागत कम करवा की बात करा तो यंत्र का उपयोग से लागत बढ़ जाए।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है कि यंत्र खरीदना ही एक बहुत बड़ी अपना जो है ना खेती का एक पूरा कार्य जो है अपना नहीं हो गया है। यंत्र हम जब भी खरीदते हैं तो यंत्र की लागत बहुत ज्यादा होती है और एक हमारे जो किसान भाई लघु सीमांत जो छोटे किसान है वो क्या होगा कि जैसे एक फसल में वो ज्यादा से ज्यादा दो दिन या तीन दिन काम आ सकता है, तो उस यंत्र में उन्होंने जो भी पैसा लगाया फिर उसको साल भर उसको संभाल के रखना यंत्र को अपने काम में लेने के बाद में, फिर एक ही खेती में एक ही यंत्र काम में आता नहीं है तो फिर कितने तरह के यंत्र वो लेंगे, लेने के बाद में उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चाहिए, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में भी और इस साल भी हमारे जो लघु सीमांत भाई है वो अपने सारे खेती के जो अपनी ऑपरेशंस है संक्रियाएं हैं वो बुआई जुताई सारी संक्रिया फसल कटाई भाई इन सब के लिए हमने एक कस्टमाइजिंग सेंटर कृषि यंत्र किराए केंद्र जिसको बोलते हैं उनकी एक योजना हमने शुरू करी थी सन 2021 से वो शुरू है।
1: यंत्र की ट्रैक्टर कृषि के मायने सब महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: ट्रैक्टर और हल जिन आप बुआई काफी टाइम करता आ रहा है, कहीं कोई अनुदान कोई चीजा किसाना ने यंत्र से जोड़वा के लिए कोई चीजा के मायने है अभी तक शुरू हो पाई है कोई?
0: देखिए, अभी जैसे मैं बात कर रहा था पहले भी जीएसएस केवीएसएस पे जो अपने कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो अभी इस वक्त भी बन रहे हैं उन पे तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ये ट्रैक्टर सहित जो भी यंत्र वो खरीदते हैं उन पे हम 10 लाख रूपये की लागत का 80% लगभग 8 लाख रूपये अधिकतम जीएसएस प्रति जीएसएस केवीएसएस हम अनुदान देते हैं जहाँ से किसान भाई अपने यंत्र ले सकते हैं। इसके अलावा अब किसान भाई अगर मान लीजिए सक्षम है और और खुद अपने स्तर पे किसी यंत्र को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी राज्य सरकार और कृषि विभाग ने

0: भारत सरकार प्रवर्तित केंद्र सरकार प्रवर्तित एक योजना है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस योजना के जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप और उसमें जो भी अनुमोदित कृषि यंत्र हैं, जो जितने भी उसके लिस्टेड हैं, उन सब पे पात्रता के अनुसार जो किसान भाई हैं उनको अनुदान देने की व्यवस्था इसमें योजना में शामिल है।
1: बिल्कुल, देखो अपन बात कर रहे हैं कृषि यंत्र की, तो अपन मोबाइल को जमाना है, तकनीकी युग है, कई बार देखा कि विदेशों

0: तो उसकी मर्जी है, तब अपना काम में ले सकता है, या खुद अपने अड़ोसी पड़ोसी
1: अगर वो सक्षम है तब तो खरीद सकता है,
0: तब तो खरीद सकता है। और अगर वो खरीद नहीं सकता है तो जो कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं, गत वर्ष तक जो हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर सारे जो स्थापित हुए हैं, उन पर हम एक मोबाइल ऐप आधारित एक मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें राज किसान कस्टमाइजिंग सेंटर ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है। उस ऐप पर जितने भी हमारे राज्य में कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो भी स्थापित हो रहे हैं या हुए हैं, वो सब उनकी पूरी उसमें डिटेल उनका विवरण होगा, उनके पास किस किस सेंटर में कितने कितने कौन से कृषि यंत्र ट्रैक्टर सहित उपलब्ध हैं, और वो कब आपने बुकिंग करा सकते हैं, किस तारीख में बुकिंग करा सकते हैं, कौन सी फसल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, सारी फैसिलिटीज उसमें होगी। कंफर्म होने के बाद बुकिंग का उनके पास में रेस्पॉन्स भी आएगा, वापस जवाब भी आएगा कि आपकी तारीख इतनी तारीख को इतने बजे आपको ये मशीन आपके खेत में पहुंच जाएगी। तो रेट लिस्ट भी उसमें फिक्स होगा, उसमें आपका लगभग बिल कितना आएगा वो भी बता दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही मतलब किसान भाई को सुविधा इससे हो जाएगी, इससे एक मॉनिटरिंग हो जाएगी किस कस्टमाइजिंग सेंटर ने किस एरिया में किस खेत में कितना काम किया। ये सभी चीजें ऑनलाइन होगी और हम सभी लोग इसको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। और कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें माली किसान भाई को कोई दिक्कत आई तो उसमें अपना जो है ग्रीवेंस अपनी शिकायत भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब बट बात कर रहे हैं कि किसान ये तकनीक से जुड़े, कृषि यंत्र से जुड़े जानकारी सवाने है, कौन कौन सा यंत्र ऐसा है जिसको उपयोग किसान ने ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जिसको की समय की बचत भी हो और बाकी जो कृषि तकनीकी है, कृषि को जो उत्पादन है भी के मायने भी कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े, और जो आप किराया की बात करो कि जितनी मजदूरी में काम करे बीसों कम लागत के मायने माको काम, क्योंकि यंत्र कई तरीका का है, कौन कौन सा यंत्र किसाना ने आज के समय में लेना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन ये एकमात्र जो अपने कृषि यंत्रीकरण की योजना भी चलाई जा रही है, और इसमें जो मैं आपको संक्रियाओं के हिसाब से बताता हूँ, जैसे खेत की तैयारी के लिए है, फसल बुआई के लिए, खरपतवार की सफाई के लिए, कीटनाशक के स्प्रेस के लिए, फसल कटाई, गहाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग से संबंधित लगभग सभी तरह के यंत्र इसमें किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसमें जो है सामान्य श्रेणी के जो कृषक है उनको कृषि यंत्र की लागत का जो अधिकतम 40% तक अनुदान, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान राज्य सरकार की ओर से विभाग की ओर से दिया जा रहा है। और जो अब आप बात कर रहे हैं कि कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनके उपयोग से वो अपने समय की बचत कर सकता है और बहुत अच्छे से खेती का काम अपना कर सकता है, तो मैं सबसे पहले जो एक जमीन को लेवल करने की जो बात आती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, लेजर लैंड लेवलर के नाम से बोलते हैं इसको। ये हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे, सभी पे तो नहीं है लेकिन कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे भी उपलब्ध है, और कुछ जगह किसान भाई अपने जो अपने काम में लेते हैं उसके बाद में अपने साथी लोगों को भी अपने किराए पे देते हैं। ये यंत्र जो है खेत की अपनी सटीक जो लेवलिंग है उसके काम में आता है, उसे पूरा स्लोप मेंटेन करता है, इससे समय की बचत, कम त्रुटि रहित काम करके कम परिश्रम में भूमि को आराम से समतल किया जा सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता है जैसे 700 से 850 वर्ग फीट प्रति घंटा प्रति बीघा होती है, इसकी लागत लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब है, जो कि किसान भाई नहीं ले पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, तो वो कस्टमाइजिंग सेंटर से ले सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद में जैसे एक उन्नत कृषि यंत्र एक और है, अपना जुताई के काम आता है, 2 बॉटम या 3 बॉटम रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
1: जी।
0: इसको जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसकी जो है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है, इसको मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं। ये अपना 30 से 50 HP तक के ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग है अपना जो प्राथमिक जोत है, शुरुआत में जो अपन जोत करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए लिया जाता है
1: जी।
0: ये खेत में 1.5 फरो या जैसे असमान धसे हुए जो है ना स्थान ऐसे खड्डे वगैरह नहीं छोड़ता है, एक समान अपने मिट्टी पलटता है, और इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए से मॉडल के हिसाब से 1,20,000 रुपए तक होती है, और इसकी कार्य क्षमता 1 बीघा प्रति घंटा तक की होती है
1: जी।
0: इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो चलने वाला यंत्र है, जो 3-4 तरह के ऑपरेशन एक ही बार में कर देता है, ऐसे यंत्र के बारे में आपको बताता हूँ, उसका नाम है रोटावेटर। ये यंत्र मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 2010-11 के करीब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लोगों के चलन में लाने के लिए। इसको पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जीएसएस केवीएसएस के थ्रू हमने उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था आरकेवाई में, और वहाँ पे रखवाया था, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था किसानों के खेतों पे। तो वो ये यंत्र इतना काम का है कि आपका जो सबसे पहले आपका मान लीजिए फसल अवशेष है उसके ऊपर में चलाए तो पहले तो फसल अवशेष को काट देगा, काट करके उसको पूरा मिट्टी में मिला देगा, जमीन को भूरभूरा बना देगा, उसके बाद में उसके पीछे पाटा चलता है तो आपके पूरे खेत को भी लेवल कर देता है। तो यूं करने के बाद में आपका रोटावेटर जो है आपके 4 ऑपरेशन एक तरह से हो गए, उसके बाद में सीधे आपको सिर्फ बुआई करनी है। तो आप देखिए कितना बढ़िया एक उपकरण हो गया आपके लिए। ये हरी खाद को भी एक तरह से मिट्टी में मिला देता है, और इसका प्रयोग गीली सूखी दोनों तरह की भूमि में किया जाता है, चावल में भी कर सकते हैं। और इसकी कार्य क्षमता जो 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन तक की होती है, इसकी लागत जो लगभग 70,000 से 1.25 लाख रुपए तक की होती।
1: तो एक तरफ तो रोजगार की बात करा, और दूसरी तरफ आदमी और जो मजदूर काम करे बीज जगह

0: मशीनरी काम में लेवा, हालांकि काम आसान बहुत ज्यादा हो जाए।
1: बिल्कुल
0: है, तो किसान ने कहीं कहनी चाहो क्योंकि कृषि को विकास जद आप कर सका, क्योंकि बिना कृषि यंत्र को जो योगदान के या को विकास भी संभव हुआ नहीं। कितना उपयोग किसाना ने लेना चाहिए यंत्र को और कितो में कृषि का विकास में यू योगदान दे रहा है?
1: देखिए आज की तारीख में तो कृषि जो है, कृषि की जो संक्रियाएं हैं, समय पर जो हमें अपना खेती का कार्यक्रम करना होता है उसके लिए यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना यंत्रों के आज खेती को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, और खेती का जो भी काम है उसको करने के लिए हमारे यंत्र हैं वो सबसे पहली बात तो है कि उसकी लागत को कम करते हैं, मजदूरों पे जो हमारी निर्भरता होती है उसको कम करते हैं, हम ज्यादा उससे किसान भाई हमारे जो उससे अपना लाभ कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और उसका जो फसल संवर्धन का और इसका कटिंग के बाद में जैसे सफाई का ग्रेडिंग का जो सिस्टम है उससे उसकी फसल का मूल्य संवर्धन, हमारे किसान भाई अपने उसका जितनी भी अच्छी फसल का उस सफाई और ग्रेडिंग करेंगे उससे उनका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों के लिए और हमारे राज्य और हमारे देश के लिए कृषि विकास में हर तरह से कृषि यंत्रों का योगदान उसे कभी भूल नहीं सकते, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि सभी किसान भाई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपनावें।
0: बिल्कुल, कृषि विकास में कृषि यंत्र को योगदान इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से आप जानकारी दी। राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर से पधारिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको गुणों गुणों धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: तो देखो आशा जी भाई
5: जी,
4: दौलत भाई बहुत चौकी जानकारी लिया राजेंद्र कुमार शर्मा जी से, कृषि विकास कमाए कृषि यंत्र की कई भूमिका है। किसान भाई ने जानकारी तो चौकी पहुंचाई और चौकी से जानकारी के बाद अब एक चौको सो
5: ये तो आप सुनाओ ही सुनाओ ला, तो आओ सा सगला ही मिलर सुना।

0: तो आशा जी
1: जी
0: भाई मांगी भाई की आवाज में मेरा लोकगीत तो आप सुना
1: जी।
0: लोकगीत सुनता सुनता अब घड़ी की सुइया इशारे करिए कि भी खेती बाड़ी कार्यक्रम को टेम पूरे हो जाए, तो किसान भाई से आप अगली बार फिर मिलेंगा। तब तक के लिए महेश भाई ने और
1: आशा ने दो आज्ञा चालार करा। राम राम, राम, राम सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अहमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे आइए सुनते फिल्म संगीत। और दोस्तों, फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वर में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: सुपर झलकी ज्ञान विज्ञान खेल स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमिर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का आमिर चैनल।
1: और श्रोता आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म से स्वर अनुराधा पौडवाल और मनहर खा गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नगमा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से स्वर, अलका याग्निक और कुमार शानू का है, गीत के बोल समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा आप सुन रहे थे मिस्टर आशिक फिल्मी कुमार सानू के स्वर में।
1: अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं।
0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो कि नई दिल्ली में खेली जा रही है, जहां तिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहुंच गई है महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। साथ ही लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी अपने अपने सिंगल्स मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। कार्यक्रम में आज जिक्र होगा भारतीय महिला हॉकी टीम के उस कीर्तिमान का, जो इस टीम ने नीदरलैंड्स में रचा है और अपने पूल डी के मुकाबले में धराशाही किया है दक्षिण अफ्रीका की टीम को, वो भी 6-1 के बड़े अंतर से। बात होगी गोल में खेले जा रहे भारत श्रीलंका क्रिकेट टेस्ट मैच की, जहां भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन मैच पर अपना शिकंजा और कस लिया है और जीत से महज 6 कदम दूर खड़ी है ये भारतीय टीम। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की भी होगी कार्यक्रम में चर्चा, जहां 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से, जहां तिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में, पुरुषों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। शानदार जीत आज इन खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में दर्ज की। हालांकि महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सिलवन, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशीष सूर्या अमृता और रोहन कपूर और ऋत्विका गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और टूर्नामेंट पे अब अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भानु, जो है बताएंगे इंडोर स्टेडियम से, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से कि क्या स्थितियां हैं। और भानु, आज का जो मुकाबला था, जिस तरह का दिन रहा, पहले दिन भारत ने सभी मैच जीते थे, आज का दिन कुछ मिला जुला रहा, कुछ जीत और कुछ हार?
1: जी शक्ति, एकदम सही कहा आपने, भारतीय खिलाड़ियों के लिए एकदम मिला जुला दिन रहा। जहां कुछ मैचेस में भारत ने जीत दर्ज की, वहां कुछ मैचेस में हार का सामना भी करना पड़ा। आज की जो शुरुआत हुई थी हमारे मैच की, जो मिक्स डबल्स का था, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गए, वो कनेडियन प्लेयर जो जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई की जोड़ी से उनसे हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, लेकिन दूसरे दो गेम्स में उन्हें 19-21 और 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज के जो दो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट रहे, वो रहे लक्ष्य सेन का और तीसरा जौली और गायत्री गोपीचंद का, जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो लक्ष्य सेन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, उन्हें पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा, जहां वो 16-21 से हार गए, लेकिन बाकी के आगे के दो गेम्स उन्होंने एकदम वन साइडेड रखे, जहां वो 21-8 और 21-4 से जीत गए। वहीं तीसरा जौली और गायत्री गोपीचंद ने स्ट्रेट गेम्स में 21-15 और 21-12 से अपने मैचेस को जीता।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भानु, जो आप जुड़े हुए थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से और अपने बता रहे थे आज के मैच के सारे अपडेट। और इस प्रकार भारत के लिए आज का दिन गुजरा। और इस दौरान उन्नति हुड्डा ने अपने मैच के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक अच्छा मैच था और उन्हें घरेलू दर्शकों के बीच इस जीत से काफी आत्मविश्वास मिला है।

0: I feel like it was a good match. I'm happy that like I was able to control the trophy well, but in the second half, during the finishing, I made few errors and just maybe rushing a little bit, but then I controlled myself. I think every match will be a different match. Tomorrow I'll be playing against Michelle's. I'll prepare well for tomorrow's match, but yeah, I played today, so got an idea of the court and everything, Prince, and I would like to the people, the all the support I have got, like all the people who came for this match and supported me. Thanks to them.
1: कह सकते हैं कि एक बेहतरीन समर्थन भारतीय खिलाड़ियों को मिलता हुआ दर्शकों की तरफ से, और आज के दिन की स्टार जोड़ी त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद ने भी मुकाबले को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: बहुत स्पेशल फील होता है सर, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड दैट इमेंसली आई एम सो हैप्पी दैट मेरे पापा का एक ड्रीम था एक अर्जुन अवार्ड मिलना, तो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड लाइक या यू गॉट द अर्जुन अवार्ड, आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कमिंग होम सून।
1: तो शानदार जोड़ी जो अब प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ चुकी है भारतीय उम्मीदों को लेकर के, और कल भी काफी अहम मुकाबले खेले जाएंगे जहां पीवी सिंधु और शेट्टी जैसे दिग्गज खिलाड़ी कोर्ट पर उतरेंगे। और अब बात की जाए नीदरलैंड्स की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक शानदार कीर्तिमान अब से कुछ देर पहले रचा है, और एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। सुनते हैं आज के मैच पर ये रिपोर्ट।
3: नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन स्थित वैगनर हॉकी स्टेडियम में आज भारत की बेटियों ने अपने विश्व कप अभियान की पहली जीत दर्ज की। भारत ने पहले क्वार्टर से ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुललिता तोपो ने 11वें मिनट में भारत को मैच में पहली सफलता दिलाई और शानदार गोल करते हुए स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। मैच के 17वें मिनट में नवनीत कौर ने और 25वें मिनट में सुशीला चानू के गोल ने मैच में भारत की बढ़त 3-0 कर दी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने अपना अटैक और तेज किया और एक के बाद एक तीन गोल दागे। दीपिका ने 38वें मिनट में, लाल रेमसियामी ने 44वें मिनट में, और इसके ठीक एक मिनट के भीतर ही साक्षी राणा ने गोल दागते हुए स्कोर 6-0 कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच का एकमात्र गोल कायला डी वॉल ने 55वें मिनट में किया। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में चीन की मजबूत टीम को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोका था। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए मैं ज्योत्सना पांडे।
1: आप सुन रहे थे आज के मैच का ये अपडेट, और इसी के साथ ही भारतीय महिला टीम ने अपने पूल में यानी पूल डी में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया है। कह सकते हैं कि पहले मैच में चीन के साथ एक बहुत शानदार ड्रॉ खेला था, कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आज इस मैदान पे भारतीय टीम के खेल का कोई सानी नजर नहीं आया, और एक ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद होगी भारतीय खेल प्रेमियों को कल अपनी पुरुष टीम से, जो सामना करेगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का। शाम 6:30 बजे नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन में यह मुकाबला खेला जाना है, जिसकी प्रतीक्षा दर्शकों को काफी समय से थी। कह सकते हैं कि इस हॉकी विश्व कप का एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला इंतजार कर रहा है। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत श्रीलंका के साथ गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर पहुंच गया है। मुकाबले के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 84 रन ही स्कोर बोर्ड पर चढ़ा सकी है। अब यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है। वहीं अगर मेजबान टीम श्रीलंका की बात की जाए तो उसको अभी भी 288 रन बनाने हैं। सुनते हैं इस मुकाबले के अब तक के खेल पर ये रिपोर्ट।
3: गोल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के चौथे दिन का खेल भारत की दूसरी पारी के साथ शुरू हुआ, जहां भारतीय टीम ने ऋषभ पंत के 66 रन और पहली पारी में शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल के 44 रन की बदौलत 193 रन बनाए। श्रीलंका के लिए असीता फर्नांडो ने 4 विकेट और प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर मिली 178 रन की बढ़त के साथ भारत ने मेजबान श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, टीम ने 47 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंकाई टीम ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 और सोनल दिनुषा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से मानव सुधार ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए, वहीं श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई थी। भारत ने इसी आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल की।

0: जया भारती स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है अपनी जीत की तरफ। कल उम्मीद होगी कि जितना जल्द से जल्द ये 6 के 6 विकेट चटकाए जाएं और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की जाए दूसरे मैच से पहले। और बात की जाए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्होंने आज भारत के लिए सर्वाधिक योगदान तो दिया ही 66 रन का, साथ ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋषभ पंत जो अपनी बल्लेबाजी में टेस्ट मैच में भी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज अपने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और वो ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 4th खिलाड़ी बन गए हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, जिनकी आज घोषणा कर दी गई। 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये दिए जाने थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को ये पुरस्कार देने का फैसला किया है।
2: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्र के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी के नाम है। शटलर त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद, मुक्केबाज नरेंद्र, शतरंज खिलाड़ी विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख, देव निशानेबाज धनु श्रीकांत, हॉकी खिलाड़ी लाल रेम सियामी और राजकुमार पाल को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके साथ साथ पुरस्कार की सूची में कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत और पूजा, पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलीट एकता भयान, रोइंग खिलाड़ी अरविंदर सिंह और निशानेबाज अखिल श्योराण का भी नाम है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में योगदान दिया हो और खेल से संन्यास के बाद भी किसी न किसी रूप में जुड़कर उसे बढ़ावा देने में योगदान देते रहते हैं। यदि द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए तो इसके लिए एथलेटिक्स से परवीर सिंह, मुक्केबाजी से छोटेलाल यादव और निशानेबाजी से नेहा नंदकुमार चौहान को चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफटाइम श्रेणी में मुक्केबाजी से धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती से वीरेंद्र कुमार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेलों में बतौर खिलाड़ी और प्रशिक्षक बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो इन दोनों ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और भारतीय महिला टीम की हॉकी खिलाड़ी लालरे सामी ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: बहुत अच्छा लगा, डीपली ऑनर टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन एंड इट्स मोटिवेट मी टू कीप वर्किंग हार्ड एंड टू डू माय बेस्ट फॉर माय कंट्री एंड माय टीम। जब मैंने मॉर्निंग भी जब सुना था जो अवार्ड के लिए तो मुझे बहुत ब्लेस फील हुआ था कि जहां मैं बिलोंग करती हूँ मिजोरम से, वहीं पे हॉकी इतना पॉपुलर नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ तक पहुंची, मैं अपने कंट्री को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ।
1: बिल्कुल, एक बहुत खुशी का क्षण है और इसी की झलक आज उनके खेल में देखने को मिली जब ये खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी और 44वें मिनट में एक शानदार गोल दागा जिसने भारत के स्कोर को 5-0 कर दिया था और भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। और अब बात की जाए एक और युवा उभरती हुई खिलाड़ी की। स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह को 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के बाद अनाहत सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान इस लय को बरकरार रखकर आगामी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने पर है।
4: I need to focus on the Asian Games and I have a few tournaments before that as well. So I'm trying to, you know, forget about the last event. Of course, carry it on with me and all everything that I've learned from it. But, you know, focus on the other events coming up and focus on those and, you know, get on with this event.
1: तो जितनी तेजी इस खिलाड़ी के खेल में दिखती है उतनी ही तेजी उनकी बातों में नजर आती है, उनके विजन में नजर आती है। अनाहत ने कहा कि एशियाई खेलों में अब 1 महीने का समय बचा है और ऐसे में वे अपने मेडल का रंग बदलने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही हैं।
4: Honestly, I can't really say right now. It's just it depends on how the event goes. But I mean, of course, I really, really want to change the color of the medal, and I'll, you know, train hard for the, you know, next 1 month that I have left until the Asian Games, and do everything that I can to, you know, hopefully change the color of the medal and do better than I did last time.

0: तो नजर है इस खिलाड़ी की अपने प्रदर्शन को और सुधारने के लिए और देश को एक और बेहतरीन पदक दिलाने के लिए। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की, जिसके सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है। एससी दिल्ली, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये चार टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं और अब खिताब के लिए अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएंगी। कल से शुरू होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों में, कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा, जिसमें एससी दिल्ली का मुकाबला ईस्ट बंगाल एफसी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को मोहन बगान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा और इन दोनों मैचों के विजेता 23 अगस्त को ये तय करेंगे कि 135वें ड्यूरेंट कप का खिताब किस टीम को मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, हुर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स के अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: The impact of climate change,
0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी।

आज समाप्त हुए दो दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया

0: से ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडम्बू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडम्बू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वासिर अगा बेकिन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिंगस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में

बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, हुर्मुज जलदंभ मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं कमर जलाल आबादी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

0: हो गई।
1: आइए सुनते हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है अजीज कश्मीरी ने। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी।

0: छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है माया।

0: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
3: अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी

0: नशा हो गया तेरा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना के आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
4: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा

करते हैं आशा भोसले मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है श्री 420।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में 16 अगस्त सन 1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नज़र गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौलाकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

दिल्ली में अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चले जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई।

मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहवारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।

इसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार का नाम

1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीड

इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आंखों से अभिनय किया, उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।

सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणिरत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी, उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। जहां दिल लेने देने की अदा भी खातिर है, यहां के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
0: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव, साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया, फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल की निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश। इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा, सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्म आई, सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न। इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू, संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी। उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।

सन 2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल FM बैंड 101.3 MHz पर। रात के

बरस बज चुके हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर। गीतों के सफर का आगाज किया है फिल्म अनुपमा के इस गीत के साथ, जिसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत में बोल हैं गुलजार के और धुन हेमंत कुमार की।

फिल्म पतिता से ये गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत में बोल थे आनंद बख्शी के, धुन बप्पी लाहिरी की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अनाड़ी से, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत में बोल हैं शैलेंद्र के और धुन शंकर जयकिशन की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म अनाड़ी से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म शगुन से, आवाज सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी की। गीत में बोल हैं साहिर के और संगीत खयाम का।

फिल्म पूर्णिमा से मुकेश और लता की आवाज में गीत सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म चोरी चोरी से, आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की। गीत में बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज है शंकर जयकिशन की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म भाई भाई से। गीत में बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, धुन मदन मोहन की।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म पेंगेस से। गीत में बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और धुन थी एसडी बर्मन की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल्ली का ठग से, आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। गीत में बोल है साहिर लुधियानवी के, धुन एसडी बर्मन की।

फिल्म प्यासा से ये गीत सुन रहे थे आप गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल्ली का ठग से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत में बोल है मजरू सुल्तानपुरी के उर्धुन रवि की।

ये गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से आशा भोसले की आवाज में, बोल कमर जलालाबादी के, और मौसीकी है ओपी नैयर की।

0: फिल्म हावड़ा ब्रिज के बाद आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस से, आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। गीत में बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन ओपी नैयर की।
1: उधर तुम हंसी

और आइए अब अगला किताब को सुनवाते हैं फिल्म छाया से, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। गीत में बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के धुन सलील चौधरी की।

0: और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: और आइए अब आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल एक मंदिर से, आवाज लता मंगेशकर की। गीत में बोल हैं शैलेंद्र के और धुन शंकर जयकिशन की।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की

0: ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज में। इसी के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों

0: मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार जो यहीं संपन्न हुए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सुबह हमारी कल प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक दीजिए इजाजत रेडियो होस्ट शबाना परवीन को। शुभरात्रि, शब बखैर, जय हिंद।